सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शनिवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 23, तदनुसार 13 जून सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: FM के 102.4 MHz पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Sethabelo off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the three missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Charge d'Affaires in New Delhi. Railways Minister Ashwini Vaishnav held a high-level review meeting with senior officials of Indian Railways on the Railway Recruitment Board (RRB) recruitment process. During the meeting yesterday, Mr. Vaishnav emphasized the need for a more transparent, accurate and technology-driven system. He also reviewed the progress made in shifting departmental examinations to computer-based test mode and said that more tablet-based examinations should be introduced to make recruitment faster, efficient and user-friendly. Defence Minister Rajnath Singh asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. Inaugurating the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's Defence Research and Development Laboratory, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex in Hyderabad, the Defence Minister said that systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Mr. Singh emphasized that strength is essential for peace and that self-reliance is the most reliable foundation for that strength. Union Minister for Heavy Industries and Steel H.D. Kumaraswamy has said that Prime Minister Narendra Modi has placed unprecedented emphasis on manufacturing-led growth and employment generation, which has accelerated industrial growth and created large employment opportunities. He said this while addressing the 65th Foundation Day celebrations of the Central Manufacturing Technology Institute in Bengaluru. Mr. Kumaraswamy said the Central Manufacturing Technology Institute, headquartered in Bengaluru, is making significant contributions to research in the strategic sector and will be provided financial and institutional support to strengthen its capabilities and expand its national footprint. Cabinet Secretary Dr. T.V. Somnath has reviewed the preparedness for the NEET re-examination in a meeting with the Director General, National Testing Agency, Abhishek Singh. During the review, the Cabinet Secretary emphasized the need for ensuring the smooth, transparent and secure conduct of the re-examination through close coordination among all concerned stakeholders. Mr. Somnathan said that the full might and weight of the law will fall on any person trying in any manner to distort, disrupt or tamper with the integrity or smooth conduct of the re-examination. Prime Minister Narendra Modi will visit Slovak Republic from tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. In badminton, India's PV Sindhu will face world champion Akane Yamaguchi of Japan in the women's single semi-finals of the Australian Open in Sydney today. The third-seeded Indian booked her place in the last four with a commanding victory over Chen Su Yu in just 27 minutes in the quarter-finals. Delhi NCR witnessed a second consecutive night of heavy rainfall last night, accompanied by thunderstorms, lightning and strong winds. The India Meteorological Department has issued a red alert for Delhi and adjoining areas, warning of moderate thunderstorms accompanied by lightning and squally winds reaching 60 to 70 km per hour with gusts up to 80 km per hour. And that is the end of this news bulletin.

0: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं वार्ता। विषय है खेत में वर्षा जल का संरक्षण।
1: खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता मित्रों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम खेती की बातें कार्यक्रम के तहत बात करने वाले हैं खेतों में वर्षा जल संरक्षण के संबंध में। जी हां, झारखंड की भौगोलिक स्थिति मुख्य रूप से पठारी है, जिसके कारण बारिश का अधिकांश पानी बहकर बर्बाद हो जाता है। कृषि को मानसून पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में का सिद्धांत अपनाना राज्य में वर्षा जल संरक्षण की कुंजी है। राज्य में खेतों के भीतर और आसपास वर्षा जल संरक्षण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसे डोभा निर्माण, खेत की मेड़बंदी, ट्रेंच यानी खाई और सीढ़ीदार खेती कर, पारंपरिक जल संरक्षण कर, चेक डैम बनाकर, पॉली लाइन तालाब बनाकर, सरकारी सहयोग और योजनाओं को अपनाकर। जी हाँ, अगर हम विस्तार पूर्वक बात करें श्रोता मित्रों, तो झारखंड सरकार की विशेष पहल के तहत खेतों के एक हिस्से में छोटे और गहरे गड्ढे यानी डोभा बनाए जाते हैं। बारिश का पानी इन डोभों में इकट्ठा हो जाता है, जिसका उपयोग मानसून के बाद रबी फसल या सूखे के समय सिंचाई के लिए किया जाता है। इन डोभों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई बहन मछली पालन और बत्तख पालन करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। कहने का मतलब है, जिस पानी को हमने संरक्षित किया है, उस पानी का कार्य हम पशुपालन कार्य के लिए भी अपना सकते हैं। खेत की मेड़बंदी की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो खेतों के चारों ओर मजबूत और ऊंची मेड़ बनाने से बारिश का पानी खेत के अंदर ही ठहर जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है, नमी लंबे समय तक बनी रहती है और भूमिगत जल स्तर में सुधार होता है। ट्रेन खाई और सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी या ऊंचे नीचे ढलान वाले क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करके मेड़े बनाई जाती है। खेतों के किनारे छोटी खाइयां खोदकर पानी को एक जगह रोका जाता है ताकि वह बह ना जाए। सीढ़ीदार खेती के संबंध में श्रोता मित्रों, अगर हम बात करें, ढलानों को सीढ़ी के रूप में काटकर पानी को रुक रुक कर बहने का रास्ता दिया जाता है, जिससे हर स्तर पर पानी का संरक्षण होता है। बात अगर हम पारंपरिक जल संरक्षण की करें, या दक्षिण बिहार और झारखंड की लगभग 2000 साल पुरानी और या कृत्रिम नहरें होती है, जो नदियों के अतिरिक्त पानी को मोड़कर खेतों तक पहुंचाई जाती है। चेक डैम की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो छोटे नदी नालों और खेतों के पानी के निकास वाले रास्तों पर कंक्रीट या मिट्टी के छोटे बांध बनाए जाते हैं। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है, खेतों को नमी मिलती है और आसपास के कुओं व नलकूपों का जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का बहाव अगर धीमा हो जाए तो खेतों के अंदर पानी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी कुएं व नलकूप हैं, जिनका जल स्तर गिर जाता है गर्मियों में और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उन कुओं व नलकूपों का जल स्तर भी काफी तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। पॉली लाइन तालाब की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए खेतों में बनाए गए तालाबों

पर पॉलीथीन की मोटी चादर बिछाई जाती है जिसमें पानी रिस कर बर्बाद नहीं होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल संरक्षण मिशन के माध्यम से चेक डैम और तालाबों के निर्माण साथ ही जीर्णोद्धार के लिए किसान भाई बहनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में सूखे जल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो सके, किसान भाई बहनों को खेती किसानी करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही साथ खेती किसानी के साथ साथ जो जल जमाव है उस स्थानों पर बत्तख पालन मछली पालन कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोता मित्रों, इस तरह से आपने जाना कि खेतों में वर्षा जल का संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति प्रवीण को, जोहार।

खेत में वर्षा जल का संरक्षण, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम शांत रहो। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं, धैर्य में शक्ति है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिए जाते, कुछ उत्तर चुप रहकर भी दिए जाते हैं। याद रखो, जो खुद शांत है, उन्हें दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

देश को समर्पित ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, जीवन यात्रा में कई बार दो मार्ग दिखाई देते हैं और सही मार्ग को परखने में हमें कठिनाई होती है। ऐसे में ईश्वर के स्मरण मात्र से सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और हमें सही मार्ग दिखाई देता है।

श्रोताओं, सुबह सुबह भगवान का नाम सभी दुखों को हर लेता है। अगर हमारे भीतर श्रद्धा है तो हमें अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, और यदि हम श्रद्धावान नहीं हैं तो श्रद्धा अर्जित करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। बहरहाल, आपको बता दें, आज कार्यक्रम वंदना में आप सुन रहे हैं नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ों में भक्ति रचनाएं।

दोस्तों, ईश्वर सत्य है, सुंदर है, सनातन है। जहाँ आनंद है, ईश्वर वहीं है। आपकी सुबह सुहानी हो और सारा दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम वंदना से अब विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं रामचरित मानस।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: Saint-Germain. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर सुनिएगा जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए। सात बजकर 20 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा शारदा सिन्हा की आवाज में कुछ भोजपुरी लोक गीत। सात बजकर 35 का समय होता है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में शामिल है पंकज कुमार मल्लिक की आवाज में रविंद्र संगीत। दांतों में दर्द, कारण और बचाव, इस विषय पर बातचीत होगी सुबह 7:50 में कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत। आप सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर विकास कुमार। आठ बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आठ बजकर 30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले होगा। आठ बजकर 45 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। नौ बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:05 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। आज सुरंजना में सुनिएगा युगल गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आएंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन, राग होगा देशकर। 10 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और यहीं से सुनिएगा 10:10 पर विश्व दर्पण। एक बार फिर फिल्म संगीत के साथ हम उपस्थित होंगे सुबह 10:20 पर। ग्यारह 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। भावगीत या शीर्षक गीत लेकर आएंगे दिन में 12:05 पर। श्रोताओं, आज शनिवार है, आज सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम अंगना। आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी सूती साड़ियों की देखभाल करने के आसान उपाय के संबंध में और साथ ही बातें होंगी पैर के तलवे और नाखूनों की सफाई के संबंध में। एक भेंटवार्ता भी इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा, महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा दोनों जरूरी। भेंटवार्ताकार होंगी एंजल उपाध्याय। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए,
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
3: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपके समक्ष आए हैं एक ज्वलंत लेकिन जागरूकता भरे विषय के साथ। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी आजकल खबरों में सुनते होंगे या फिर अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी युवा या युवती ने या फिर किसी उम्र दराज ने या किसी अधेड़ उम्र की महिला या पुरुष ने आत्महत्या कर ली या फिर करने की कोशिश की। और श्रोताओं, यह खबर बहुत ही दुखद लगती है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी या फिर उनके पास क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विकल्प सभी के पास होता है, बस जरूरी बात यह है कि उसको अमल में कैसे लाया जाए। इसीलिए श्रोताओं, इस विषय के प्रति जागरूकता जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ा है। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है और आज के कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार महोदय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देने की कृपा करें।
4: मैं डॉक्टर जे आर जैन, डायरेक्टर हूँ जीवन संस्था। जीवन एक सुसाइड प्रिवेंशन एंड आत्महत्या निवारण केंद्र है जो 2006 से अपने शहर में कार्यरत है
3: जी।
4: और मैंने ये संस्था 2007 में ज्वाइन की थी एंड देन फिर उसके बाद में डायरेक्टर 2010 में बना, अभी तक डायरेक्टर हूँ उसका।
3: बहुत ही अच्छी बात है महोदय। जैसे कि आजकल आप भी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कि हाल के कुछ दिनों में हमारे शहर में आत्महत्याएं की घटनाएं कुछ बढ़ सी गई हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे?
4: इसी दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट्स की सुसाइड और एक जनरल पब्लिक की सुसाइड। स्टूडेंट्स के जो सुसाइड होते हैं वो नॉर्मली उनके एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं, यानी उन पर या तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है, तब वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे केसेज हैं जो रिलेशनशिप के हैं, वो भी हमारे पास में आते हैं। और जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर में हालांकि ये रिलेशन वाले भी काफ़ी केसेज आते हैं रिलेशनशिप के, और इसके अलावा भी हमारे पास में ये इकोनॉमिक कंडीशंस की, उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, उससे उनको डिप्रेशन स्ट्रेस होता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब देखते हैं कि मेरी कोई बात नहीं समझ पा रहा है, तब वो समझते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा पेन है और एक ही सॉल्यूशन है, सुसाइड करना। हालांकि ये सब जानते हैं कि सुसाइड एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आदमी को थोड़ा समझना होगा, उसकी अवेयरनेस बढ़नी होगी। एक्चुअली जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है सुसाइड रेट कम होते हैं, ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है।
3: जी हाँ, जैसे कि महोदय आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया कि कुछ उम्र के युवा भी होते हैं, कुछ और अधेड़ उम्र के भी लोग होते हैं। तो जैसे कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि पढ़ाई की वजह से या कैरियर के प्रेशर की वजह से कुछ युवा आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दे लेते हैं, तो फिर वहीं कुछ 30 से 40 साल के बीच के लोग हैं जो किसी घरेलू झगड़े की वजह से या तो अवसाद की स्थिति में हैं या फिर किसी बात से वो निराश हो गए हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोग इन छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं?
4: ऐसा है कि एक्चुअली हमारी यदि अवेयरनेस बढ़ती है तब क्या होता है कि आदमी समझता है कि मेरे पास स्ट्रेस आया, इसको कैसे रिलीव करना है। यदि वो नहीं जानता है, स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहता है, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अकेला रहना शुरू करता है या सोचता है कि मेरे को कोई समझता नहीं है। लेकिन यदि उसके अंदर में अवेयरनेस रहती कि ऐसी कंडीशन में मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कैसे सबसे कॉन्टेक्ट में रहूँ, कनेक्टेड रहूँ, हम लोग कनेक्टेड बोलते हैं कि सबसे कनेक्टेड रहने से उसकी जो मन की भावना है वो बाहर निकल सकती है, तब वो ये भी सोचता है कि मैं किसके साथ में शेयर कर सकता हूँ। अपनी भावना जैसे ही वो शेयर करता है तो उसका अंदर का प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे कम होता है तो उसकी सोच वापस सही ढंग से सही रास्ते पे आ जाती है। अदरवाइज अंदर अंदर में घुटते घुटते सोचने लगता है कि नहीं, मेरे को कोई आदमी समझता नहीं है और मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं, एजुकेशन दें मेंटल हेल्थ की, स्ट्रेस की। तो इस पर हम लोग काफ़ी आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे स्कूलों में

0: बराबर ऐसे प्रोग्राम वर्कशॉप हम करते रहते हैं, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़े उसके लिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनमें कंपटीशन देते हैं। एक थीम दे दिया सुसाइड प्रिवेंशन का, आप ड्राइंग बनाइए, आप डिबेट करिए, और काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, हर साल करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स के अंदर में सुसाइड के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ रही है। और आजकल तो लास्ट ईयर हमने सितंबर में जब ये अरेंजमेंट किया था तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले कि काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे ये समझ में आया कि अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है सुसाइड रेट डिप्रेशन का रेट कम होता जाता है।
1: जैसे कि महोदय आपने बातें की डिप्रेशन या फिर अवसाद की, आजकल देखने में ये आता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तनाव और अवसाद या फिर यूँ कह रही है डिप्रेशन आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार तत्व हैं। तो आप अगर काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग किस प्रकार की होती है ताकि लोग तनाव से भी मुक्त हो सकें और डिप्रेशन से भी निकल जाते हैं, ताकि आत्महत्या जैसी घटनाएं ना कर सकें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम लोग एक्चुअली उनको कैसे डिप्रेशन से बाहर लाते हैं।
1: जी,
0: तो हमारा जो वॉलंटियर्स हमारे हैं वो बिल्कुल वेल ट्रेन्ड हैं, कई तरह के डिप्रेशन के जो कारण है उनको कैसे हैंडल करना है तो बड़ी रिगोरस उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंडर्स वर्ल्ड वाइड, यूके के अंदर में है और मोर देन 40 कंट्रीज के अंदर में सेंटर्स हैं। हमारी इंडिया के अंदर में उसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफेंडर्स इंडिया करके नाम से है और हम उसी के ही अम्ब्रेला में आते हैं। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में टोटल 16 सेंटर्स है और सब के सेंटर्स के जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में उनको की दी जाती है और वो ट्रेनिंग करीब 24 घंटे की रिगोरस फर्स्ट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में एक साल तक उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं, रोल प्लेज करवाते हैं, बराबर उनसे डिस्कशन करते रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कराते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है, ऐसा है तो एक साल में करीब करीब वो काफ़ी अच्छी लेवल पर आ जाते हैं। तब उनको हम लोग टेलीफोन पे बैठाते हैं कि अब आप रिफ्रेंडिंग कर सकते हैं। रिफ्रेंडिंग बोलते हैं हम इसको, काउंसलिंग नहीं बोलते हैं, काउंसलिंग से थोड़ा डिफरेंट है
1: जी।
0: इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को जो भी हमारे से कॉन्टेक्ट करता है उससे हम एक कॉन्फिडेंशियलिटी स्थापित करते हैं कि भाई आपकी कोई भी बात है इस सेंटर से बाहर नहीं जाएगी, कोई भी आ जाए आई विल नॉट शेयर कि कौन आया, क्या उसने शेयर किया। जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है तब वो हमारे साथ में सब प्रॉब्लम शेयर करता है जो शायद घर में किसी के साथ में वो शेयर नहीं कर सकता है। और जब वो शेयर करता है तब हम उसको और प्रमोट करते हैं कि और ज़्यादा बोलता रहे और सोचता रहे। इस दौरान हमको कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं, उस पर हम ड्वेल करके उसको पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं, तब वो समझता है कि ये हमारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरी बात को समझता है और फिर वो सोचना शुरू करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हम उसको इसको हम लोग एक्टिव लिसनिंग थेरेपी भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इसमें हमारी जो रात दिन में लोग बाग जैसे हैंडल करते हैं या समझते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको वापस अनलर्न करना पड़ता है, मतलब उसको भूलना पड़ता है कि वी शुड नॉट डू दिस वन। हम किसी को एडवाइस भी नहीं करते हैं कि आप आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या खराब है, ये सब जो नॉर्मल लोग करते हैं हम लोग वो नहीं करते हैं कि हम समझते हैं कि बाहर में बहुत लोग हैं जो इनको एडवाइस करते रहते हैं, दिस फेड अप ऑफ एडवाइस। तो हम एडवाइस नहीं करके उसी को एम्पावर करते हैं कि वही आगे बढ़े और उसकी हम प्रॉब्लम बाकायदा एम्पैथी के साथ में भी, जैसे उसको दर्द होता है उस दवा से वैसे हमको भी दर्द हो रहा है, एम्पैथी के साथ में इसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो ये जब ट्रेंड आदमी हो जाता है तो धीरे धीरे वो आदमी डिप्रेशन में हमसे जो कॉन्टेक्ट करता है वो बाहर निकलना शुरू करता है। हमारे पास में टाइम लिमिट नहीं रहता है, वो 2 घंटे तक बात कर सकता है, आराम से सोच सकता है, रो सकता है, रोता है भी तो भी हम उसको नहीं बोलते कि रो मत, उसको अपने आप हम एम्पावर करते रहते हैं। ये बहुत ही वेल टेस्टेड और बहुत अच्छी सक्सेस रेट वाली थेरेपी है।
1: हाँ जी, सही बात है महोदय कि एक्टिव लिसनिंग थेरेपी जिसकी बात की आपने कि हम अगर हम किसी की बातों को सुन पाए तब उसके दुख को शेयर भी कर सकते हैं। जी महोदय, कि ऐसे कुछ तौर तरीके भी जरूर होंगे जिनको अपनाकर लोग खुद को खुश रख सकते हैं, तो अंत में चलते

0: चलते आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे कुछ तौर तरीके अपनाएं अपने जीवन में, ताकि खुद तो खुश रहें और अपने आसपास भी खुशी लोगों में बांट सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छा है। खुश रहने के लिए जनता को एक तो ये है कि हम ज्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से अपेक्षाएं नहीं रखें। यदि तो रखते हैं तो फिर जो भी टेंशन होता है तो उसको परमानेंटली मत रखिए साथ, उसको शेयर करिए लोगों के साथ में। बताइए कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, हमारे से बात करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। जब वो शेयर कर लेता है तो डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होता है, और डिप्रेशन क्योरेबल रहता है, ये उसको ध्यान में रखने का है। और सुइसाइड का थॉट है, दैट इज प्रिवेंटेबल। कभी भी सुइसाइड का थॉट आता है तो जरूर हमसे पहले शेयर करेगा, बताएगा, हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, तो वो अपने आप बच जाएगा। हम उसको नहीं बोलेंगे कि सुसाइड मत करो, लेकिन हमारे से बात करने से ही उसको समझ में आएगा कि ये सोल्यूशन राइट सोल्यूशन नहीं है, जरा दूसरे विकल्प है उसके पास, तो वो एम्पावर होकर के दूसरे विकल्पों के साथ में आगे बढ़ेगी। कभी भी हो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, यदि एंग्जाइटी है, आप सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन हमेशा आपके साथ में है।
2: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए।
3: समस्या है तो समाधान भी, जहां चाह वहां राह, बात बन जाएगी।
2: जरा सुनिए।
4: जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं शारदा सिन्हा की आवाज में कुछ भोजपुरी लोकगीत।

शारदा सिन्हा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:35 और

भक्ति सेकंड हुए हैं। अब आइए सुनते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। आज सुरांजलि में सुनिए पंकज कुमार मल्लिक की आवाज़ में रविंद्र संगीत।

पंकज कुमार मल्लिक की आवाज़ में आप सुन रहे थे रविंद्र संगीत। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है दांतों में दर्द, कारण और बचाव। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर विकास कुमार। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज बातें दांत के दर्द के बारे में। अक्सर लोग दांत में दर्द होने की शिकायत करते हैं, किन कारणों से दांतों में दर्द होता है और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार।
1: हेलो
0: डॉक्टर साहब, दांत में दर्द होने का मुख्य कारण क्या होता है?
1: दांत में दर्द होने का सबसे पहला कारण होता है दांत में कैविटी बनना, दांतों में कीड़ा लगना, दांत में कैविटी गड्ढा बनना, जो लोकल बोलचाल में हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं। इसमें कैविटी बनने के कारण होता है खाना का फंसना। अगर आप किसी भी तरह से खाना वहां फंसता है और आप उसको ब्रश करके क्लीन नहीं कर पाते हैं, वैसे केस में वो खाना फंसा रह जाता है। अच्छा। और हमारे मुंह के पानी में, जिसको सलाइवा बोला जाता है, सलाइवा में बैक्टीरिया रहता है, जो बैक्टीरिया यूजुअली स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंट्स रहता है
0: जी।
1: ये बैक्टीरिया उस खाने को एनर्जी बनाने के रूप में यूज करती है।
0: अच्छा।
1: और इन प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड दांत पर गिरा देती है। वो लैक्टिक एसिड दांत के कैल्शियम लेयर को गलाता जाता है और एक समय के बाद दांत कमजोर हो जाता है और किसी बाइट प्रेशर के कारण वो दांत टूट जाता है।
0: अच्छा।
1: ग्रेजुअली ये फंक्शन होता जाता है अंदर, और जब नस में टच करता है तो उस समय दर्द होता है।
0: अच्छा, तो ये दर्द हमेशा रहता है या किसी खास उम्र के लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है?
1: ये किसी भी एज में हो सकता है। यूजुअली बच्चों में, जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, जो बॉटल में दूध पीते हैं, उन लोगों में नर्सिंग बॉटल केरिस होता है।
0: अच्छा।
1: और आप देखेंगे छोटे बच्चे जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, उनके दांतों में काफी ज्यादा है। रीजन है कि आप दूध पीने के बाद, जिसमें जनरली शुगर मिलाकर आप माँ पिलाती हैं, वो पिलाने के बाद दांत को साफ नहीं करती, जिससे ये काफी तेजी से फैलता है। इसी तरह का एक केरिस बच्चों में ये भी होता है, रैम्पेंट केरिस।
0: अच्छा।
1: जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है कारण अलग हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सेम, ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
0: मान लीजिए कोई काफी दिनों से नजरअंदाज कर रहा हो और दांत में उसके दर्द है, तो उसका क्या बुरा प्रभाव, मतलब दूरगामी परिणाम हो सकता है?
1: जाहिर सी बात है, इसके जो दुष्परिणाम काफी भयावह भी हो सकते हैं, काफी डरावना भी हो सकता है। रीजन ये है कि जैसे जैसे वो इन्फेक्शन अंदर जाता जाता है, वो पस नीचे के हड्डी को गलाता जाता है, जिसमें बीमारी काफी वर्स्ट सिचुएशन पर भी पहुंच जाती है। सो बेटर है इस दांत का ट्रीटमेंट, अगर दांत में कीड़ा लगा है आपको अर्ली स्टेज में ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। वो
0: ब्रश करने की कोई प्रॉपर विधि है जिससे कि हम अपने दांत को सुरक्षित रख सकें?
1: यस, तो ब्रश करने के लिए जब भी आप करें, मसूड़ा सामने के दांत के लिए, मसूड़ा और दांत के बीच में 45 डिग्री एंगल पर ब्रश के टिप को रख के, ब्रिसल को रख करके डाउन की तरफ ऊपर के दांत के लिए नीचे की तरफ मूव करें।
0: अच्छा।
1: और नीचे के दांत में ऊपर की तरफ मूव करें और चबाने वाले सरफेस पर सर्कुलर मोशन पर मूव करें, इससे काफी अच्छे से ब्रश होगा और नो डाउट उससे कीड़ा लगने की टेंडेंसी भी काफी हद तक कम हो जाएगी।
0: दिन में कितने बार ब्रश करना ज्यादा
1: एडवाइजेबल? 2 बार है।
0: अच्छा।
1: और सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए उसके लिए, एंड फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कीजिए और एक माउथ वॉश।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि दांत में दर्द होना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जरूरत है थोड़ी सी सावधानियां बरतने की। डॉक्टर साहब ने जैसी जानकारियां दी उस पे अगर हम अमल करें तो निश्चित ही दांत के दर्द से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

दांतों में दर्द, कारण और बचाव, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का थे डॉक्टर विकास कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 870001424।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिलहाल जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
6: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on six-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed three Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's seventh official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
8: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
6: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruti from Bratislava, has filed this report.
9: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. The visit will further reinforce India's commitment to strengthening cooperation with European Union member states. Midi M. Paluruti, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
6: Defence Minister Rajnath Singh today congratulated Defence Research and Development Organisation DRDO for successfully conducting three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered defence against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range. In a social media post, the minister said that these tests have put India in elite group of nations having ballistics missile defense capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations' defense capabilities against different types of enemy threats. The passing out parade is being held today at the Indian Military Academy, IMA, in Dehradun, the capital of Uttarakhand. President Draupadi Murmu is attending the occasion and has reviewed the parade. This year's passing out parade is historic, as for the first time, women cadets are passing out alongside gentlemen cadets from the academy. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
4: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished and is rooted in tradition and open to the world. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple, and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Through spiritual circuits and modern pilgrim amenities, India's civilization pride is being seamlessly revived. Among the key initiatives driving this transformation have been the Museum Grant Scheme and the Cultural Function and Production Grant Scheme. These schemes have helped preserve India's civilizational heritage while simultaneously encouraging cultural creativity and grassroots participation. Under the Museum Grant Scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Ismail, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
10: 2016-17 museum grant established, we upgraded a new annexe, and there we have set up Games and Sports Gallery and then the Textile Gallery. Through the museum grant scheme, the one thing, most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
4: The Cultural Function and Production Grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instrument for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production following a fresh infusion of financial aid. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhai Bam Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
11: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received this year, we have received 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
4: India has taken big step to protect its culture and share it with the world. Ancient temples have been restored, holy places improved, and old traditions brought back to life. At the same time, new roads, clean facilities, and better services have made it easier for people to visit these places. People around the world are showing interest in India's way of life. Today, India's rich culture is not only shining at home, but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a post on X, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi.
12: India and Bangladesh have reaffirmed their commitment to maintaining peace, tranquility and stability along the India-Bangladesh border. The 57th Director General Level Border Coordination Conference between the Border Security Force and Border Guard Bangladesh was held at BSF headquarters in New Delhi from 8th to 11th June. The conference provided an important platform to review the prevailing border situation and discuss issues of mutual concern relating to border security and border management. The Trump administration said it is prepared to accept a civilian nuclear energy program in Iran as part of a broader nuclear agreement, provided Tehran dismantles the infrastructure that could enable it to build a nuclear weapon. The clarification came as a senior administration official outlined details of a

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट सचिव ने की 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप SIR के तहत नाम जोड़ने और सुधारने का होगा कार्य। मुख्यमंत्री की मतदाताओं से बूथों पर जाने की अपील। राज्य सरकार ने राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए दी प्रशासनिक स्वीकृति। गढ़वा और गुमला कारागार में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने पर खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। JSCA स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच

0: होगी पहली भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक कर 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। इस बीच एनटीए ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। आयुष मंत्रालय और हेबल्ड की ओर से कल एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के लाखों लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं।
1: आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था और हेबिल के साथ मिलकर हम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें देश और दुनिया भर के लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास करेंगे। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दो सीटों के लिए हो रहे इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी मैदान में हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं, जिससे वे दोनों सीटें आसानी से जीत लेंगे।
2: कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा। तो आप देखिएगा, 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे, क्योंकि वो व्यथित है।
3: 34 के 34 गठबंधन के साथ हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के बाद जो शेष बचेगा उसकी भी गारंटी।
0: इधर भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास आवश्यक आंकड़ों से अधिक विधायकों का समर्थन है और वे दूसरी सीट पर जीत दर्ज करेंगे।
4: जो भी यहाँ पर विधायक इनके हैं, जिनको करप्शन का शेयर नहीं मिल रहा है, वो अंदर ही अंदर नाराज है और एक बिकाऊ विधायक की तरह राज्यसभा के बाजार में बिकने को तैयार है। और हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि निश्चित तौर से भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे।
0: नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय मीडिया और सोशल मीडिया सम्मेलन में देश भर से 350 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित 16 अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में भ्रामक सूचनाओं से निपटने, चुनावी साक्षरता और निर्वाचन रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगाए गए इन कैंपों में नागरिक अपना नाम जोड़ और सुधार सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मतदाताओं से बूथों पर जाकर अपने नाम जांचने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत गढ़वा के नगर उटारी और गुमला कारागार में 531 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इस अत्याधुनिक तकनीक से जेलों की सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पिछले 10 दिनों के भीतर शहर में 37,000 से अधिक ऑनलाइन और

0: ऑफलाइन चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने पुलिस से वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की सख्त अपील की है।
1: 1 जून से 10 जून तक 34,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा हुआ है और ज्यादातर जो उल्लंघन हो रहा है वो रोड पे जहां तहां पार्किंग कर देना, जिससे ट्रैफिक बाधित होना, विदाउट हेलमेट ओवर स्पीडिंग ज्यादा देखने में आ रहा है। इसमें हमारा फोकस है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आए और एक ट्रैफिक सिविक सेंस रांची वासियों में डेवलप करने के उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थियों और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से रांची हावड़ा रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ट्रेन संख्या 08161 आज रात 9:30 बजे रांची से खुलकर सुबह 6:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह कल रात हावड़ा से खुलेगी। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जो अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार संताल सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
2: एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफिशिएंट रेनफॉल रहेगा और उसी की उम्मीद है, और पूर्वानुमान में भी सुना होगा कि इस साल थोड़ा सा ओवरऑल भारत के लिए भी मॉनसून थोड़ा सा डिफिशिएंट रहने का चांसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है।
0: झारखंड T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में रांची टाइटंस की भिड़ंत कोयलांचल सुपर किंग्स से होगी, वहीं दूसरा मैच छोटा नागपुर रॉयल्स और संताल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा। JSCA स्टेडियम में होने वाले इन मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। झारखंड की पहलवान प्रियंका महतो और प्रशिक्षक राजीव यादव अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल के लिए रांची से सोनीपत रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय पदक विजेता और JSSPS की प्रियंका 14 जुलाई को दिल्ली में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेंगी। चयनित खिलाड़ी बाकू में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के झारखंड में दस्तक देने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मॉनसून वक्त पर, दस्तक बेअसर। प्रभात खबर के शब्द हैं, पंचायत सेवक रहते 20 साल पहले ली थी 500 रुपए की घूस, 80 साल की उम्र में जाएंगे जेल। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची में नामांकन जांचने के लिए बूथ पर जाएं लोग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2004 के पहले उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव ने की 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप SIR के तहत नाम जोड़ने और सुधारने का होगा कार्य। मुख्यमंत्री की मतदाताओं से बूथों पर जाने की अपील। राज्य सरकार ने राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए दी प्रशासनिक स्वीकृति। गढ़वा और गुमला कारागार में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने पर खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। JSCA स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी का मतलब केवल पाना नहीं बल्कि खोना भी होता है। वैसे ये हम सब जानते हैं कि जिंदगी चार दिनों की नहीं जिसे यूं ही बर्बाद कर दिया जाए। जिंदगी तो एक खूबसूरत नगमा है जिसे यदि सुरों के साथ गुनगुनाया जाए तो हमारे साथ साथ आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है।

दोस्तों, मन में उत्साह, सकारात्मकता और स्नेह की भावना रखें। जिंदगी हमारे दामन में खुशियों के फूल तभी गिराती है जब हम हंसकर उसे गले लगाते हैं। ऐसा करके देखें, जिंदगी बदली बदली सी लगेगी।

आज कार्यक्रम फिल्म संगीत में जिन फिल्मों के गाने सुने वो थे शोर और हमराज, आवाजें थी लता मंगेशकर, मुकेश, उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत की बोल लिखे थे संतोष आनंद और सुधाकर शर्मा ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हिमेश रेशमिया का। और अब कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
1: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के

0: राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राजकीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुँच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को निर्धारित नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन को किसी भी तरह से प्रभावित करने या बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को समृद्ध परमाणु ऊर्जा सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 और 23 सेकंड हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जलवायु उपभोग और उत्पादन यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी खासकर अमीर देशों में तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति विशेषकर संपन्न लोग कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: डॉक्टर आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सिरंजना। सुरंजना सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों शनिवार विशेष सुरंजना में आज युगल गाने बेहद अच्छे लगते हैं श्रोताओं सुनने में, और ऐसा इसलिए होता है कि दो आवाजें भावनाओं और दृष्टिकोणों का एक अनूठा संगम होता है ये युगल गाने। दो आवाजें मिलकर भावनाओं को अधिक गहराई से व्यक्त करती हैं, और शायद यही कारण है कि हम सब इन गानों से बेहद जल्दी जुड़ जाते हैं।

चांद के पार चलो, इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें थी, गीतकार थे ऋषि आजाद और संगीत दिया था विष्णु नारायण ने। दोस्तों, युगल गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि दो लोगों के बीच के अनूठे बंधन का एक संगीतमय अनुभव होता है जो सीधे हमारी दिल को छू जाता है।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल इरशाद कामिल ने लिखे थे और संगीत पद किया था ए आर रहमान ने। श्रोताओं, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। आज सुरंजना में आप सुन रहे हैं युगल गाने।

जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाजों में अमावस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे कुमार और संगीतकार थे संजीव दर्शन। दोस्तों, युगल गाने जुड़ाव, प्यार और एकता के एहसास को बढ़ावा देते हैं। ये गाने रिश्ते की खूबसूरती को बेहद प्रभावकारी ढंग से उजागर करते हैं। अलग अलग गायकों की आवाजें, अलग अलग टोन और स्टाइल के कारण गाने में विविधता आ जाती है। चलिए एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: ट्वाइलेट एक प्रेम कथा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल लिखे थे सिद्धार्थ और गरिमा ने, संगीत दिया था विक्की प्रसाद ने। और श्रोता, इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुरंजना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत बस थोड़ी ही देर में।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में

विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे राग देशकर में। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह के 10 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप 10 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर सुनेगा विश्व दर्पण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. On the second leg of his visit, Mr. Modi will visit Slovakia. He will hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico and explore new avenues of cooperation. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Avignon, France, on 16th and 17th of this month. During the summit, he will exchange views with G7 leaders and those from invited partner countries and international organizations participating in the summit. On the final leg of the visit, the Prime Minister will visit Paris on 18 June for further bilateral engagements and to attend Europe's largest technology and startup event, BivaTech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The Prime Minister's presence at the G7 reflects India's standing as a leading voice of the Global South and a key partner in addressing global challenges. Finnish Foreign Minister Elina Valtonen defended India for buying Russian oil, explaining that India followed the rules of the Western price cap, Speaking at a meeting in Finland alongside Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने बताया है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप को मध्य पूर्व से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत को अन्य किफायती विकल्प तलाशने पड़े। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने किया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। श्री सिंह ने कहा कि इस दृष्टिकोण में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है। बर्मिंघम के एडबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर ही सिमट गई। भारत का पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विश्व दर्पण। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
4: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

0: अलका याग्निक की आवाज़ में उमरा उजान फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।

एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में हंसते जख्म, इस फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल थे कैफी आज़मी के और संगीत था मदन मोहन का। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कहो ना प्यार है, इस फिल्म का गीत आपने सुना। लकी अली की आवाज़ थी, विजय अकेला ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस

के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

दोस्तों, कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि सुबह का समय हमारे लिए कितना खुशनुमा होता है, खूबसूरत होता है, और एक नए दिन की शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आज कुछ हमारे लिए नया होगा, ख़ास होगा, अच्छा होगा। और इसी तरह का पॉजिटिविटी हम रखें तो वाकई सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और कहते हैं ना कि फूलों की तरह खूबसूरत और नाजुक है हमारी ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी में जितना प्यार हम बांटेंगे उतनी ही खुशियां हमारे जीवन में बहारें लेकर आएंगी। तो बस ज़िंदगी से प्यार कीजिए और दूसरों की खुशियों का कारण बनिए। इसी विचार के साथ हम स्वागत कर रहे हैं आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। स्वीकार कीजिए गीता का प्यार भरा नमस्कार।

डियर जिंदगी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जसलीन रॉयल और साथियों की आवाज़ों में कौसर मुनीर ने गीत लिखा और धुन बनाई अमित त्रिवेदी ने। और अब श्रोताओं कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज के दिन की जो मानवता की विविधता समावेशन और जागरूकता का प्रतीक है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर साल 13 जून को मनाया जाने वाला ये दिन उन लोगों की याद दिलाता है जिन्हें अल्बिनिज्म यानी रंगहीनता की स्थिति के साथ जीवन जीना पड़ता है। श्रोताओं, अल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर मेलेनिन नामक रंग द्रव्य का उत्पादन नहीं कर पाता, जिसके कारण त्वचा, बाल और आँखें बहुत हल्के रंग की हो जाती है और ये दुनिया भर में हर जाति, लिंग और समुदाय में पाया जाता है। आज के इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2014 में हुई और इसका पहला आयोजन साल 2015 में हुआ और अब हमारे देश में भी ये दिवस जागरूकता फैलाने का माध्यम बन गया है। श्रोताओं, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और अल्बिनिज्म को भी उसी विविधता का हिस्सा मानकर समावेशी समाज की दिशा में हमारा देश जो है काम कर रहा है। अल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इससे कई तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे कि सनस्क्रीन, चश्मे, टोपी और नियमित चेकअप की ज़रूरत होती है। शादी विवाह में भेदभाव, नौकरी में अवसरों की कमी और अपने को अलग थलग बिल्कुल महसूस करना और साथ ही खुद में आत्मविश्वास की कमी। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो इन चुनौतियों के बीच अल्बिनिज्म वाले लोग डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार, एथलीट और सामाजिक कार्यकर्ता बनकर समाज में आज योगदान दे रहे हैं। साथ ही भारत सरकार, एनजीओ और जागरूकता अभियान भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। श्रोताओं, ऐसे लोग हमसे अलग नहीं हैं, बस थोड़े अलग रंग के हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सम्मान और अवसर दें, उनका हाथ थामें और उनको हमेशा सहयोग करें।

तारे ज़मीं पर इसे फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना। शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में प्रसून जोशी ने गीत लिखा और धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने। आज के दिन की चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, तो आज का दिन एक और रूप से विशेष है जो टीम भावना, मेहनत, अनुशासन और मज़े का प्रतीक है। जी हाँ, आज है विश्व सॉफ्ट बॉल दिवस। हर साल 13 जून को मनाया जाने वाला ये दुनिया भर में सॉफ्ट बॉल के प्रेमियों को एक मंच पर लाता है। श्रोताओं, सॉफ्ट बॉल बेसबॉल का छोटा और रोमांचक रूप है। ये खेल महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए लोकप्रिय है। ये न सिर्फ शारीरिक फिटनेस हमारा बढ़ाता है बल्कि टीम वर्क, रणनीति और साहस भी सिखलाता है। सॉफ्ट बॉल की शुरुआत साल 1887 में अमेरिका के शिकागो में हुई थी। शुरू में इसे इंडोर बेसबॉल कहा गया, पर साल 1926 में इसका नाम सॉफ्ट बॉल पड़ा। समय के साथ दुनिया भर में ये फैलता गया और साल 1991 में 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि महिला सॉफ्ट बॉल को अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और फिर इसी महत्वपूर्ण तारीख को याद करते हुए साल 2005 में इंटरनेशनल सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ने आज के दिन को विश्व सॉफ्ट बॉल दिवस घोषित किया और तब से हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। आज हमारे देश में लाखों बच्चे ये खेल जो है खेल रहे हैं। महिलाओं की टीम एशियन गेम्स में भी डेब्यू कर चुकी हैं और कई राज्यों में इस खेल को अब जो है बढ़ावा भी मिलने लगा है।

मेरी कॉम फिल्म का ये गाना था, विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में। संदीप सिंह थे गीतकार और संगीतकार थे शिवम। और अब बात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर की, जिन्हें बाबा राव भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के बड़े भाई थे। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म आज के दिन 1889 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। कम उम्र में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण उन्होंने अपने छोटे भाइयों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाई और अपने भाई विनायक दामोदर सावरकर के साथ मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। बाबा राव ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। साथ ही महान राष्ट्रभक्त गणेश दामोदर सावरकर ने भारतीय संस्कृति और अपने भाई वीर सावरकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: स्वतंत्रया वीर सावरकर, इसे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। दिव्या कुमार और विजय प्रकाश की आवाज़ों में रंजीत सावरकर ने गीत लिखा और धुन बनाई अनु मलिक ने।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: और श्रोताओं अब बात मनोरंजन जगत की। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार प्रेम धवन को, जिन्होंने अपने करियर में कई शानदार गीत लिखे, जिनमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और ए वतन जैसे गाने शामिल हैं। उनकी गिनती देश के मशहूर गीतकारों में होती है। दोस्तों, प्रेम धवन सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि संगीतकार, कोरियोग्राफर और अभिनेता भी थे। उनका जन्म आज ही के दिन 13 जून 1923 को अम्बाला में हुआ था। प्रेम धवन ने साल 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास के फिल्म आज और कल में संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए और उसके बाद उन्होंने मशहूर संगीतकार रविशंकर से संगीत सीखा। साल 1946 में प्रेम धवन ने धरती के लाल से एक गीतकार के रूप में शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों के गीत लिखे। साल 1970 में भारत सरकार ने प्रेम धवन को पद्मश्री से सम्मानित किया और साथ ही 1971 में फिल्म नानक दुखिया सब संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 80 के दशक के आते आते उनके करियर की चमक धीमी पड़ गई और साल 2001 में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है प्रेम धवन ने, संगीत तैयार किया है रवि ने और आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: हटा दो जरा मुखड़ा।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। और श्रोताओं, बात एक महान गजल गायक की जिन्हें दुनिया शहनशाह गजल के नाम से जानती है। जी हाँ, अपनी भारी और मनमोहक आवाज के लिए मशहूर गजल गायन को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले वो शख्स जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की प्रतिभा को गजल गायन में सुंदरता से पिरोया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गजल गायक मेहदी हसन की। उनका जन्म साल 1927 को राजस्थान के झुंझुन जिले के लोना गांव में एक संगीतकार प्यार परिवार में हुआ था। उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता और चाचा से ली और साल 1957 में रेडियो पाकिस्तान में कराची से एक ठुमरी गायक के रूप में अपने आधिकारिक गायन कलाकार की शुरुआत की। संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। साल 2000 के अंत में उनके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो गई और 13 जून 2012 को कराची में उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन कर रहे हैं और सुनते हैं, आपको सुनवा रहे हैं अहमद फराज की लिखी ये गज़ल मेहदी हसन की आवाज़ में।

और अब श्रोताओं, एक अच्छी खबर हमारे शहर के लिए कि डिजिटल अवतार में अब नज़र आएगा लौह नगरी का गौरवशाली इतिहास। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम मिशन के तहत ज़िले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए अब जो है पहल शुरू कर ली गई है। ज़िले में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और आदिवासी ज्ञान परंपरा को अब अत्याधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके।

अब एक अच्छी खबर है कि अब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आधार सेवाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए अब आम जनता को लंबी कतारों और समय की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे राज्य में डाक परिमंडल ने जमशेदपुर के बिस्टोपुर स्थित प्रधान डाकघर समेत राज्य के सभी 13 प्रधान डाकघरों में आधार सेवाओं का समय बढ़ा दिया है और इन केंद्रों पर अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार आधार से जुड़े सभी कार्य किए जाएंगे। और इसके तहत नया आधार बनवाने के साथ साथ नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में भी सुधार आसानी से की जा सकती है।

झूठा कहीं का ऐसे फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गुलशन बावरे ने गीत लिखा और धुन बनाई आरडी बर्मन ने। और अब एक जानकारी, मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब जो है परीक्षा के लिए अतिरिक्त 15 मिनट दिया जा रहा है। रफ कार्य के लिए अब 2 अतिरिक्त पेज भी मिलेंगे और 21 जून को दोबारा होने वाली मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये निर्णय लिया है। और एनटीए के अनुसार परीक्षा के लिए समय सीमा 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है। और नीट यूजी 2026 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक किया जाएगा। और इसके साथ ही एनटीए ने प्रश्न पत्र बुकलेट में रफ कार्य के लिए दिए गए पेजों की संख्या भी 2 से बढ़ाकर 4 कर दी है। परीक्षार्थी रफ कार्य के लिए बुकलेट की शुरुआत और आखिर में दिए गए रफ वर्क पेजों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब श्रोताओं, चलते चलते मौसम का हाल। हमारे राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में जो है मानसूनी प्रभाव दिखने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों में सभी ज़िलों तक पहुंचने की संभावना है। और मौसम विभाग ने राज्य के 9 ज़िलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं कई ज़िलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। और इस बीच आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अब चलते चलते हम आपको एक गाना सुनवा दे रहे हैं।

और श्रोता इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार गीता की ओर से।

0: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन की 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से

अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शीर्षक गीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्रोताओं उन गीतों की जिन्होंने फिल्म जगत में नैन यानी आँखों की भाषा को अमर कर दिया। जी हाँ, आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे ही गीत जो नयन शब्द को अपने बोलों में समेटे हुए हैं।

दोस्तों कहते हैं ना कि आंखें दिल का आईना होती हैं, चाहे वो प्यार की पहली नज़र हो, इंतज़ार की बेचैनी हो या फिर जुदाई का दर्द। कहा जाए तो इन नैनों ने हर भाव को बयां किया है।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत, और आज हम बात कर रहे हैं नैनों की। दोस्तों, वैसे जुबान से हम अपनी बातें कहते तो जरूर है, पर यही बात अगर आंखों के जरिए कहा जाए तो हमारी समझ के मुताबिक बहुत ही मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता। पर देखा जाए तो आंखों की अपनी भाषा है और इस भाषा का कोई मुल्क नहीं होता। नैनों की भाषा नैन ही पढ़ती है और दिल की बातें भी बखूबी समझती हैं।

श्रोता, भारतीय संस्कृति में आँखों को हमेशा भावनाओं का दर्पण माना गया है, चाहे वो काव्य हो, साहित्य हो या फिर फिल्मी दुनिया हो। नैनों की आँखों की अभिव्यक्ति हर कला में विशेष स्थान रखती है। एक ऐसा ही गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं जो आँखों के माध्यम से प्रेम की बेचैनी और तड़प को व्यक्त करता है। जब मन किसी की आँखों में खो जाता है, तब बाकी दुनिया उसके लिए महत्वहीन हो जाती है।

आज के शीर्षक गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया वे थी सांवरिया, माय नेम इज खान, अनवर और दबंग। आवाजें थी शान, शफाकत अमानत अली, क्षितिज तारी, शिल्पा राव, राहत फतेह लिखा श्रेया घोषाल और साथियों की, गीत लिखा समीर अनजान, निरंजन अयंगर, हसन कमाल और फैज़ अनवर ने, और संगीत तैयार किया मोंटी शर्मा, अनुराग सैकिया, शंकर एहसान लॉय और साजिद वाजिद ने। और इसी के साथ आज का शीर्षक गीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

0: थी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

0: बहनों केंद्र पर एक बार फिर हो रही है हमारी मुलाकात ध्वनि तरंगों की ताल पर आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। बहनों कार्यक्रम अंगना करता है आप सबों को नमस्कार जोहार। बहनों यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस विचारधारा वाले हमारे देश में आज भी महिलाओं के लिए जीवन पथ आसान नहीं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना एक दुभर मार्ग दिखाई देता है। महिलाओं को किस तरह इस समाज में शिक्षित और सुरक्षित रहना है, ये बात आज भी विचारणीय है। शिक्षा और सुरक्षा हमारे महिलाओं के व्यक्तित्व के निर्माण में दो प्रमुख बिंदु है। आइए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे स्टूडियो में एंजल उपाध्याय जी। एंजल उपाध्याय जी, आपका आकाशवाणी जमशेदपुर के कार्यक्रम अंगना में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारी बहनों को आप अपना परिचय दें।
1: मैं एंजल उपाध्याय सेवानिवृत्त हिंदी शिक्षिका हूँ। महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा दोनों आवश्यक है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है।
0: आज हम सभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। एंजल जी, आपकी दृष्टि में महिलाओं का सशक्तिकरण क्या है?
1: आज सर्वप्रथम अंगना कार्यक्रम को सुनने वाली सभी बहनों को नमस्कार। महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आपके ये विचार बेहद गंभीर और आज के समय के सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। सच पूछा जाए तो मेरी दृष्टि में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सिर्फ महिलाओं को अधिकार या नौकरी देने भर नहीं है, बल्कि उसकी सशक्तिकरण तो तब है जब एक महिला अपने जीवन से जुड़े फैसले, चाहे वह पढ़ाई हो, कैरियर हो, शादी हो या आर्थिक निर्णय हो, बिना किसी दबाव के खुद ले सके। इतना ही नहीं, उसे हर क्षेत्र में पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने का अधिकार मिले, उसके अंदर आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास हो, वह मानसिक रूप से भी मजबूत हो, ताकि विषम से विषम परिस्थिति का सामना पूरी निर्भीकता के साथ स्वयं कर सके। संक्षिप्तः, महिलाओं को उसके अधिकारों के प्रति सचेष्ट करना, स्वयं उसे पाने हेतु सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।
0: पहले हमने देखा था कि महिलाओं के बीच शिक्षा और जागरूकता की कमी थी,

0: पर आज तो ऐसा नहीं है। आज के माहौल में इन दोनों चीजों में किस तरह का परिवर्तन आप देखती हैं?
1: आपकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। पुराने समय से आज के समय में जमी आसमां का अंतर है। पहले लड़कियां सिर्फ बुनियादी शिक्षा भर प्राप्त करती थीं ताकि अपनी घर गृहस्थी संभाल सके, लेकिन आज अत्यंत दमित लाचार माता पिता भी लड़कियों की उच्च शिक्षा हेतु प्रयत्नशील है और सरकार भी इस दिशा में गंभीर है। यही कारण है कि आज लड़कियां तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, प्रशासनिक ऑफिसर, जज आदि बन रही हैं। लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। माता पिता अब बेटे बेटी में फर्क न करते हुए दोनों को समान शिक्षा दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।
0: आज जो तकनीक और सोशल नेटवर्क का युग है, तो क्या इससे भी आप समझती हैं कि महिलाओं में अवेयरनेस और एजुकेशन को बल मिलेगा?
1: जी हाँ, यह 100% सही है कि आज के डिजिटल युग में तकनीक और सोशल मीडिया महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। तकनीक और विशेषकर सोशल नेटवर्किंग ने जीवन की हर दिशा को प्रभावित किया है। दुनिया हमारी मुट्ठी में समा गई है। इंटरनेट की मदद से ई लर्निंग की सुविधा उपलब्ध हुई है। न केवल शहर बल्कि दूर दराज के गांवों में रहने वाली लड़कियां भी देश विदेश के प्रसिद्ध शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। YouTube और ऑनलाइन कोर्सेज ने शिक्षा को हर घर तक पहुंचा दिया है। गांव में रहने वाली महिलाएं Facebook, Instagram, YouTube जैसे मंचों द्वारा अपना हुनर दिखाते हुए अपना बिजनेस कर रही हैं और उसमें निरंतर सफलता भी उन्हें मिल रही है।
0: ये सही है कि एजुकेशन आज हर घर तक पहुंच चुका है, पर बहुत सारी जगहों में उन्नति के बाद भी महिलाओं में असुरक्षा की जो भावना है वो दिखाई देती है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी और हम किस तरह से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं?
1: इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि इसके मूल में महिलाओं की अपनी आत्मविश्वास का अभाव है, जिसके कारण महिलाएं अपने को अबला मानती हैं। इन महिलाओं को महिला अधिकारी भारतीय सेना की कर्नल कुरैसी और भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जीवन गाथा से सीख लेनी चाहिए। लोगों का मानसिक संस्कार शोधन कर महिलाओं के मनोमस्तिष्क से भय निकाल कर इसे दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें अपने सपूतों के हृदय में महिलाओं के प्रति आदर सम्मान का भाव जागृत करना चाहिए। पुरुषों की मानसिकता, उनकी नजरिया बदलनी होगी। सरकार से गुहार लगाएं कि महिलाओं के प्रति होने वाली अपराधों की सजा तुरंत सुनाई जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शहर के प्रत्येक गली कूचों को CCTV कैमरे से सुरक्षित किया जाए। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा का सही व्यवस्था किया जाए। इसके साथ ही साथ लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा का भी पाठ पढ़ाया जाए, ताकि लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बने, उनका मनोबल बना रहे।
0: एंजल जी, हमारे कार्यक्रम अंगना में गृहिणियां भी जुड़ी हुई हैं और कामकाजी महिलाएं भी। सर, देखा है कि कामकाजी महिलाएं अपने काम के प्रति इतना डूब जाती हैं कि अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो जाती हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे कामकाजी महिला बहनों को अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगी?
1: इस संदर्भ में मैं महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि जान है तो जहान है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को संतुलित आहार, जिसमें हरी सब्जियां, ताजे फल, दाल, साबुत अनाज और अन्य प्रोटीन युक्त भोजन

0: जो पदार्थों का होना आवश्यक है। इसके अलावा नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद तथा तनाव मुक्त जीवन परम आवश्यक है। पर्याप्त जल का सेवन भी बहुत जरूरी है। समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी करवाते रहना चाहिए। स्वस्थ रहकर ही वे परिवार और कार्यस्थल दोनों जगहों पर अपने कर्तव्य का सही निर्वहन कर सकती हैं।
1: ये सही कहा आपने कामकाजी, हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनके लिए तो घर की चौखट भी अहम है और ऑफिस का वातावरण भी उनके लिए जरूरी है। तो ऐसे में वो उन दोनों ही जगहों के बीच कैसे संतुलन बना सकती हैं?
0: जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कामकाजी महिलाओं को दोनों जगहों पर संतुलन बना के रखना बहुत ही आवश्यक है। नौकरी करने वाली महिलाएं समय प्रबंधन, कार्यों की प्राथमिकता तय करके तथा परिवार के सदस्यों के सहयोग से घर और अपने पेशे के बीच संतुलन बना सकती हैं। दफ्तर का काम घर पर न लाएं और न घर में बराबर ऑफिस का ईमेल या मैसेज चेक करें। ऐसा पारिवारिक कलह का कारण बनता है। बेहतर होगा अपनी क्षमता से अधिक काम अपने सिर पर न लें। यदि आप व्यस्त हैं तो सहकर्मियों या परिवार को विनम्रता से ना कहना सीखें। इसके अलावा ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन एप्स का उपयोग करें, इससे आपका समय बचत होगा। इस तरह से उपर्युक्त बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रख पाएंगी बल्कि घर और ऑफिस दोनों जगह अपनी भूमिका को भली भांति निभा सकेंगी।
1: एंजल जी, चलते चलते आप कार्यक्रम अंगना सुनने वाली हमारी बहनों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: यही कहना चाहूंगी, उठिए, जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, उनको पाने के लिए तत्पर रहिए। जीत आपसे बस दो कदम दूर है। आप विश्वास करें, आप में अपार शक्ति है। किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं मानिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि शिक्षा से हर बंद दरवाजा खुल जाता है। घर परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखने की जगह एक दूसरे की ताकत बने, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। आप समाज का आधार हैं, राष्ट्र का कल्याण आपके ही हाथों में है। अगर मैं नारी शिक्षा की बात करूं, तो प्राचीन काल में भी कई ऐसी विदुषियां थीं जिन्होंने भारत की गौरव में ज्ञान परंपरा को संरक्षित रखा, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, अहिल्याबाई होलकर, सावित्री बाई फुले इत्यादि का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। इन लोगों ने ज्ञान को अपना आभूषण बनाया। इतना ही नहीं बल्कि आज भी कई ऐसे नाम आपने सुना होगा जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। महिलाओं की शिक्षा का जो एक सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहा है, वह समाज को मजबूत करेगा और एक आदर्श राष्ट्र के सपना को साकार करेगा। इसलिए हर घर में, हर परिवार में शिक्षा के प्रति जागरूकता नितांत आवश्यक है। देश के समुचित विकास के लिए, इसके गौरव को कायम रखने के लिए हमारी आधी आबादी को पूर्णतः शिक्षित होना तथा यथोचित सम्मान मिलना परम आवश्यक है। अंत में कहना चाहूंगी, नारी से घर परिवार है रिश्तों में जान, सबको करना चाहिए नित नारी का सम्मान।
1: अगर हमें सुरक्षित वातावरण मिलेगा, सभी लोग शिक्षित हो पाएंगी, पर दूसरी ओर अगर शिक्षित महिलाएं हैं तो उन्हें ये जानना और समझना आसान होगा कि वो अपने लिए एक सुरक्षित समाज कैसे बना सकती हैं। एंजल जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमसे जुड़ी और हमारी बहनों से आपने शिक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचारों की साझेदारी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: कई बार हमने देखा है कि हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारे पहनावे से होती है। हम जो कुछ भी पहनते हैं और जैसे पहनते हैं उससे भी पता चलता है कि हमारी सोच क्या है, हम किस विचार को मानने वाले व्यक्ति हैं और जीवन के प्रति हमारा नज़रिया कैसा है। इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो हमारे पहनावे से हमारा व्यवसाय भी पता चलता है। इसलिए बहनों, मौसम कोई भी हो, हम अपने पहनावे पर भी पूरा ध्यान दें। साफ कपड़े पहने, महंगे कपड़ों का होना जरूरी नहीं, पर कपड़े जो भी हों व्यवस्थित हों, साफ हों, तभी आपके व्यक्तित्व में सुबह के समय भी चार चांद जैसी सुंदरता दिखेगी। बहनों, ये मौसम जो है वो मानसून की प्रतीक्षा का है, पर साथ ही गर्मी अभी तक हमारे आसपास अपना दबदबा बनाए हुए है और ऐसे मौसम में सूती कपड़े और सूती साड़ियों का चलन मन को बड़ा सुकून देता है। बहनों, यूं तो हर मौसम में सूती साड़ियां हमारे आराम और शरीर में हवादार अनुभव देने के लिए जानी जाती हैं, पर जब मौसम थोड़ा गर्म हो तो ये पारंपरिक अवसरों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर हम अच्छे तरह से का देखभाल करें तो काफ़ी सालों तक यह ताजी, सुंदर और पहनने के लिए आकर्षक बनी रह सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उपयोग यह है कि यह हमारे पसीने को सोखता है और सूती कपड़ों को पहनने से हमारे बदन को एक ब्रीदिंग एक्सपीरियंस मिलता है। पर अगर सूती साड़ियों को ध्यान रखने की बात की जाए तो इसे जब भी हम पहने तो कुछ ढीली सिलाई के साथ पहने और साथ ही कभी कभी सूती साड़ियों और सूती कपड़ों को धोने के बाद ये अतिरिक्त रंग छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें कभी भी किसी दूसरे कपड़े के साथ न धोएं। एक और बात यह भी है बहनों कि जब भी सूती साड़ियों को धोएं तो वॉशिंग मशीन के अलावा अगर इसे आप हाथ से धोती हैं तो यह अच्छा रहता है। ठंडे या गुनगुने पानी का प्रयोग करें, इससे सूती साड़ियों के रंग की कोमलता और उसकी बनावट खराब नहीं होगी। कई बार सूती कपड़ों का रंग बहुत जल्दी चला जाता है तो इसके लिए धोने के बाद इसे छाया में सुखाएं, डायरेक्ट धूप की रोशनी में न डालें। जब भी इसे सुखाकर अपने अलमीरा में रखें तो इसे मलमल के कवर में पैक करके रखें। प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें। जब भी इसे पैक करें या अलमीरा में रखें तो आश्वस्त हो जाएं कि ये पूरी तरह से सूख चुकी हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गीलापन रह जाएगा तो इससे दुर्गंध आ सकती है। आज तो बाज़ार में नए नए तरह के कई सारे सुंदर डिज़ाइन वाली सूती साड़ियाँ मौजूद हैं और अब तो शादी ब्याह में या किसी खास फंक्शन में भी लोग आरामदायक और डिजाइनर सूती साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। इसमें हमारा पारंपरिक लुक झलकता है। बहनों, सूती साड़ियों की देखभाल के लिए कुछ मुश्किल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोमल तरीकों से ही सूती साड़ियों को धोना है और धोने के बाद सुखाकर उन्हें रखना है। बहनों, गर्मी के मौसम में सूती साड़ियों के उपयोग से व्यक्तित्व में जो गंभीरता और परिपक्वता झलकती है वह भी नारी की गरिमा का परिचायक है। तो जरूर सूती साड़ियों को अपनी आलमीरा में जगह दें और अपने दिल में भी। बहनों, गपशप के बाद आइए आनंद लेते हैं संगीत के रिमझिम फुहारों का और सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का एक गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मैनू, जब बात सौंदर्य की होती है, सुंदरता की होती है, तो हमेशा ये याद रखना होगा कि कहीं ना कहीं इसका संबंध सफाई से भी होता है। हम अगर साफ सुथरे रहते हैं, लोगों को भी पसंद आते हैं। यूं तो हमारे शरीर में हर अंग का समान महत्व है, पर कभी कभी हम अपने पैर और तलवों को और पैर के नाखूनों को नज़रअंदाज करते हैं। जबकि सच तो यह है बहनों कि घर में रहकर भी अगर हम इन पर ध्यान दें तो इसे हम साफ सुथरा भी रख सकते हैं और स्वस्थ भी। दिन भर जूते मोजे पहनने से और कई बार धूल मिट्टी पसीने की वजह से भी हमारे पैर के नाखूनों में गंदगी जमा हो जाती है और साथ ही बैक्टीरिया भी। और इससे होता यह है कि बदबू की समस्या भी होती है, फंगल इन्फेक्शन और नाखूनों के काले पड़ने जैसे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। तो बहनों, अगर हम नियमित रूप से पैर के नाखूनों की सफाई करें तो इसे सुंदर और चमकदार भी बना सकते हैं और इससे हमारे पैर भी स्वस्थ रहेंगे। अक्सर देखा तो ये गया है कि हम लोग अपने चेहरे, अपने हाथों की खूब देखभाल करते हैं, लेकिन पैर के तलवों को नज़रअंदाज करते हैं। बहनों, इसकी सफाई के लिए कुछ तरीके बहुत ही सहज हैं। जैसे सबसे पहले गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालें और शैम्पू की भी कुछ बूंदें डालें। अब इसमें अपने पैर को 10 से 15 मिनट तक डुबोकर रखें। नेल ब्रश या टूथ ब्रश से हल्के हाथों से नाखूनों के नीचे की गंदगी को साफ करें। उसके बाद साफ तौलिए से अपने पैर को पोंछकर नाखूनों में क्रीम या नारियल तेल लगाएं। बहनों, हर 10 से 15 दिन में एक बार जरूर अपने पैर के नाखून को काट लें ताकि वहाँ गंदगी जमा ना हो और उसका आकार भी सही बना रहे। बहनों, ये महंगाई का ज़माना है, ऐसे में बार बार ब्यूटी पार्लर जाकर पेडिक्योर कराना सबके लिए तो आसान नहीं होता। पर अगर हम इस तरह के घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें तो हम अपने घर की बचत भी कर सकते हैं। अपने पैरों को हमेशा सूखा रखें, साफ रखें और नाखूनों को नींबू के रस से साफ करें। अगर कभी इन्फेक्शन की समस्या हो और बढ़ जाए तो डॉक्टर से सलाह लेकर उसका निवारण करें। बेकिंग सोडा और नींबू का रस अगर नाखूनों पर रगड़ा जाए तो इससे भी हमारे नाखून चमकदार और साफ दिखाई देते हैं। बहनों, नेल पॉलिश बार बार नहीं बदले और कभी भी कसे हुए जूते और गीले मोजे न पहने। रात में सोने से पहले अपने पैरों में मॉइस्चराइजर या तेल लगाएं। बहनों, पैरों की सुंदरता का भी अपना एक खास महत्व है। बहनों, याद है ना फिल्म पाकीज़ा का वो डायलॉग, जब नायक ने नायिका से कहा था, आपके पैर बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा। तो बहनों, आज से ही अपने पैरों की ओर एक नज़र डालें और इसकी सुंदरता पर भी ध्यान दें। और बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा। वीकेंड का आनंद लें और साथ ही मानसून का भी स्वागत करें। हम फिर मिलेंगे और करेंगे गपशप। मुस्कुराते रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं। इस समय दिन का ठीक एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और ठीक 1:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a six-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a two-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi says India's youth are making their mark across various sectors, from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi emphasized that India is among the world's leading startup destinations, and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. He also lauded the youth for bringing immense glory to the nation in the field of sports and for contributing to various areas that will shape the future of India and the world. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic, as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said it is not only a milestone in the history of India's defence forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
3: I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a social media post, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The Enforcement Directorate conducted searches at 7 premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. Iran has said it will not sign a final peace agreement with the United States to end the months-long conflict unless its key conditions are met, despite reports that both sides are close to reaching a preliminary deal. Speaking to Iran's state broadcaster, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the text of a memorandum of understanding had been finalized and could be signed digitally in the coming days. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कोल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, विनिर्माण और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में देश के युवा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में उभरने में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने नवाचार और युवा नेतृत्व वाले विकास को नई गति दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण है।
1: तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नागरिकों और व्यवसायियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल को 12 साल बेमिसाल बताते हुए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।
2: मोदी जी के 12 वर्ष में बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और ये योजना चला है। आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों को इलाज के लिए योजना हो रही है, उसमें काफी लोग आयुष्मान भारत से लाभ ले रहे हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना जिसमें हर साल किसानों को 6,000 रुपया का अनुदान राशि दिया जा रहा है, इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारा योजना भी चल रही है।
0: असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायु सेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिमडेगा जिले ने जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर इतिहास रच दिया है। झारखंड में यह मुकाम हासिल करने वाला सिमडेगा पहला और अग्रणी जिला बन गया है। जनगणना निदेशालय ने उपायुक्त कंचन सिंह के नेतृत्व में मिली इस उत्कृष्ट सफलता की सराहना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 29 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में JSSC से चयनित 1018 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य सहायक आचार्य के कुल 26,000 पदों को तेजी से भरकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता तीन बच्चों का सुराग लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शाम शहर में मसाल जुलूस निकालेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रोश जताया है।
3: अविलंब तीनों बच्चों की बरामदगी हो, मतलब तो बात होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं धुरुआ मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि कल शाम में 6 बजे उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय। शादियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है।
0: रांची नगर निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 32 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। उपनगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि 30 जून तक एकमुश्त टैक्स भुगतान करने पर नागरिकों को 10% तक की छूट दी जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने जिले में गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की त्वरित व सटीक जांच के लिए विशेष जांच सेल का गठन किया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह विशेष टीम हत्या, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों की वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तफ्तीश करेगी।
4: इन्वेस्टिगेशन सेल हमने यहाँ पे बनाया है अलग से। एक सेल जिले में काम करेगी, दूसरा कोई महुआ अनुमंडल में काम करेगी। जिले की सेल सभी से कोऑर्डिनेट कर वैसे केसेस की सूची इनके पास रहेगी और वो पूरी टीम रहेगी जहाँ पे केस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उसका डिटेक्शन किया जाएगा। उसको हर तरह की संभव सहायता दी जाएगी जिला से ताकि उसका अतिशीघ्र उस केस का मतलब डिटेक्शन कर पाए।
0: जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशु कर्मकार सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं।
5: पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कदमा थाने की टीम द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। तो ये घटना छापेमारी करने के लिए टीम गठित थी, उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया और सती घाट और खरकई नदी के किनारे से 2 लोगों को पकड़ा गया। इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी देसी पिस्टल वो बरामद कर ली गई है और भी कुछ चीज पर ताश मारती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
0: उत्तर प्रदेश के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रक के बीच में हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में पलामू जिले के मेदिनीनगर के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है। सभी डेहरी में बारात में शामिल होने के बाद किछौचा शरीफ से वापस लौट रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून ने संताल परगना के रास्ते दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्हान और संताल क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों के भीतर मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। इधर रांची में आज दोपहर गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने उनके निधन को भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने मनु भाकर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी देश को दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नए कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 100% किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कुल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 1:21 हुए हैं और आप इस समय सुन रहे हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
8: आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं भूल भुलैया फिल्म के टाइटल ट्रैक के साथ। नीरज श्रीधर की आवाज है, समीर ने गीत लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में अजहर फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। मनोज यादव ने गीत लिखा और धुन बनाई प्रीतम ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। और अब कार्यक्रम का अगला गाना सरबजीत फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजें हैं। रश्मि विराग ने गीत लिखा है और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

रांझना फिल्म का ये गाना था जसविंदर सिंह, शिराज उप्पल और साथियों की आवाज़ों में। इरशाद कामिल ने गीत लिखा और धुन बनाई A.R. रहमान ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और अब इस कार्यक्रम के लिए वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का। अभी हाजिर होते हैं

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 800,000 सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।

अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और अब कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में। महबूब का लिखा यह गीत है, धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने और फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

तुम मिले फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, जावेद अली इरशान शदब अशरफ की आवाज़ों में। शहीद कादरी ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी प्रीतम ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leaves on a 6-day visit to France and Slovakia. Says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia on a 6-day visit. In his departure statement, Mr. Modi highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Prime Minister Modi will arrive at Nice in France at around 10:30 p.m. Indian time. Ahead of the Prime Minister's arrival, members of the Indian community, startup founders and business leaders in Nice have expressed enthusiasm over the visit, which is expected to further deepen India's engagement with Europe. Our correspondent reports that elaborate preparations have been made to welcome the Prime Minister, with members of the diaspora looking forward to interacting with him during the visit.
2: The India-France people-to-people story runs deep. Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030, particularly in STEM fields. France has opened new doors through a 5-year Schengen visa, a 2-year post-study work permit, and a young professional scheme for those aged 18 to 35. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
3: There is a core belief there that key partnerships, for instance with France we have now special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic. And that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
2: It is precisely the spirit of research, innovation and people-to-people connect that Bharat Innovates brings to Nice tomorrow. And with it, the promise of a partnership that only grows stronger. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: Prime Minister Modi has also noted that his historic visit to Slovakia will build on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. During his visit, Prime Minister Modi will hold talks with the country's leadership on enhancing ties in key sectors. After concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi will travel to France to participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. More details on this from our correspondent.
4: The Prime Minister will depart from Nice to Slovakia tomorrow for a 2-day visit. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico in Bratislava. He noted that the visit will energize India's strategic partnership and the European Union, of which Slovakia is an important and valued member. After concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi will travel to Evian, France, where he will participate in the G7 summit on 16th and 17th of this month. The Prime Minister emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. Mr. Modi said that this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Finally, the Prime Minister will conclude his visit in Paris on 18th June, where he will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The Prime Minister said that he is looking forward to meeting the members of the vibrant Indian community in Paris. Mr. Modi expressed confidence that these visits will reinforce India's deepening engagement with both Europe and the G7 and showcase India's steadfast commitment to expanding the horizon of its partnership with the continent and beyond. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: The Indian diaspora in Slovakia is eagerly waiting for the arrival of Prime Minister Modi on his maiden visit to the country. Indian Ambassador to the Slovak Republic, Apurva Srivastav, has said the finalization of the Indian-European Union Free Trade Agreement will pave the way for enhanced cooperation between India and Slovakia. She noted that bilateral trade between the two countries has already crossed $1.8 billion.
5: Indian-Slovakia bilateral relation is getting very strong now. 2024, as you rightly said, it crossed the 1 million mark. In 2025, it was 1.6 billion euros. And with the finalization of India-EU FTA, there has been more possibilities, more areas of cooperation that have emerged. So I'm sure there'll be definitely an increase in bilateral trade. The visit of Prime Minister Modi will also be instrumental in opening new avenues of cooperation.
1: Prime Minister Modi today said that India's youth are making their mark across various sectors from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi added that today, India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. He also said that in numerous international competitions, the country's young athletes have consistently enhanced the national pride. The Indian Army today welcomed 481 new young officers as the 158th passing out parade was held with grandeur at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. President Draupadi Murmu reviewed the parade as the reviewing officer. The event marked the successful completion of rigorous military training by the cadets. Displaying exemplary discipline, dedication and military spirit, the young officers marched with precision during the ceremony. More from our correspondent.
6: On the occasion, the president said that the Indian Military Academy is a symbol of honor, courage and service to the nation. Describing the passing out of women cadet as a significant milestone in the history of the academy, she said that it is an inspiring step towards women-led development in the country.
7: I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
6: Mrs. Murmu urged the officers cadets to remain lifelong learners, take courageous decisions, and demonstrate ethical leadership in the face of evolving security challenges.
7: In an era of rapidly changing security challenges, technological advances, and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future-ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision-makers, and ethical leaders.
6: During the ceremony, the prestigious Sword of Honor for overall excellence during training was awarded to Officer Cadet Vishal Kumar. He also secured the first position in the Order of Merit and received the Gold Medal. Prince Raj stood second, while Tejas Bhatt secured the third position and received the Bronze Medal. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh has urged the newly commissioned Indian Air Force officers to adapt to the evolving warfare technologies, including drones, satellites and robotics, in the changing security environment. He was reviewing the combined graduation parade of the 217th course at the Air Force Academy in Dundigal, Hyderabad today. Addressing the graduating officers, Mr. Singh emphasized that modern warfare has undergone significant changes and officers must continuously update themselves with emerging war systems and strategies.
8: radar, satellites, drones.
9: Many systems such as radars, satellites, drones, sensors and robotics are deployed in today's warfare, in which neither the fighter is known nor their machinery and equipment. And today the definition of warfare has changed to a great extent. I believe that in your training programs and exercises, you have been well prepared to face uncertainty and unexpected challenges.
1: The Defence Minister also commissioned the first batch of women cadets trained at the National Defence Academy who had joined the Air Force Academy for branch-specific training after passing out from the NDA last year. The ceremony also featured aerial displays by the Sukhoi 30 MKI, the Sarang Helicopter Display Team and the Surya Kiran Aerobatic Team. Senior officials from various wings of the Defence Forces attended the event. India has lodged a strong protest to the United States over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf that killed three Indian sailors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and said that such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. External Affairs Ministry today said reports of death of Indian sailors in vessel Liaki Freedom are incorrect. The ministry said it has spoken to the master of the vessel Liaki Freedom, which has confirmed that all crew members are safe. The fact-check unit of MEA has urged people to stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. The Enforcement Directorate, or ED, today conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Niti Aayog held a meeting with the German delegation aimed at advancing the Indian-Germany Development Partnership in New Delhi. The India-Germany Development Partnership highlighted the complementarity between Germany's technical expertise and development finance capabilities and India's policy ambition and institutional scale. According to the Niti Aayog, the discussions covered key areas of cooperation, including India's net zero transition, renewable energy, circular economy, agricultural transformation, water resource management and others. The government's flagship initiative, Beti Bachao, Beti Padhao, has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
10: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए खासकर विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया
12: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए
11: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक
10: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे एक रिपोर्ट
13: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली
10: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
14: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
7: इन एन एरा ऑफ rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
14: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे। प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
10: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
8: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
10: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
15: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
10: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
12: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
10: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जब जब फूल खिले। क्षमा करें श्रोताओं, अभिलाषा फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर की आवाज में गीत आनंद बख्शी ने लिखा और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गाना आशा फिल्म की का है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। शैलेंद्र है गीतकार, संगीतकार शंकर जयकिशन।

किस्मत फिल्म का ये गाना था आशा भोसले की आवाज़ में। SH बिहारी ने गीत लिखा और धुन बनाई OP नैयर ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय दोपहर के ठीक 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ठीक 3 सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित न्यू इंडिया समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माय भारत झारखंड की डिप्टी डायरेक्टर श्वेता सिंह ने बताया कि माय भारत एक

0: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देशभर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है।
1: ये वन ऑफ द प्रोग्राम्स है जिसमें यूथ का जो व्यू पॉइंट है कि हम आत्मनिर्भर भारत को कैसे और आगे पहुंचा सकते हैं और विकसित भारत 2047 की श्रेणी में कैसे भारत को आगे खड़ा कर सकते हैं, उसमें उनके क्या ओपिनियंस है और ये ग्रास रूट से टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में यूथ के क्या ओपिनियंस है उसको माई भारत नेशनल पोर्टल तक पहुँचाने का काम कर रही है।
0: केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 बजे मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा मां देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। एम्स देवघर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए अलग पंजीकरण काउंटर और प्रतीक्षा कक्ष शुरू किया गया है। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के पास शुरू की गई इस नई सुविधा से मरीजों को पंजीकरण और इलाज में आसानी होगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि यह काउंटर 24 घंटे काम करेगा। इससे आपात स्थिति में भी आयुष्मान कार्ड धारकों को तुरंत मदद मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के उकामांड पंचायत स्थित मुरू गांव में आज कृषि विभाग की ओर से खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग, जल संरक्षण तथा संभावित सूखा और कम वर्षा की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीटीएम और एटीएम ने किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी नई योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पेयजल समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
2: 3000 से ज्यादा हम लोग लास्ट 3 महीना में रिपेयर किए हैं। अभी भी 400-500 लंबी था जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली योजना है और उसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि तक उसमें काफी सहयोग रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी की समस्या कहीं नहीं हो और आज सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित क्षेत्र है वही हम लोग आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का ड्रिंकिंग वाटर का रिव्यू थी।
0: मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मॉनसून प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम ने त्वरित कार्रवाई के लिए 11 क्विक रिस्पॉन्स टीमों के गठन का फैसला किया है। चतरा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के बाबा घाट मैदान स्थित एक अर्ध निर्मित भवन में छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के खुटगड़ी गांव में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ओमान तट पर टैंकर MT सेट्टेबेलो पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के बाद ये बातचीत हुई। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। केरलम स्थित प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर कल से मलयालम माह मिथुनम की पूजा के लिए खुलेगा। तांत्री कंदारारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में मेल संथी ईडी प्रसाद शाम 5 बजे गर्भगृह के द्वार खोलेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यू इंडिया समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेन हजारिका की आवाज में कुछ गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेन हजारिका की आवाज में गीत, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:15 हुए हैं। आदिवासी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सांताली लोकगीत से। कलाकार हैं उमा पदो मुर्मू और साथी।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार उमापदो मुर्मू और साथियों की आवाज में सांताली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित भीमसेन जोशी से ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी से ठुमरी, और इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:45 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैथिली लोकगीत से। कलाकार हैं पद्मा झा और साथी।

0: कार्यक्रम लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार पद्मा झा और साथियों की आवाज में मैथिली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माय भारत झारखंड की डिप्टी डायरेक्टर श्वेता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा बंद पड़ी जल मीनारों को शीघ्र चालू कर रिपोर्ट देने को कहा। सरायकेला खरसावा की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने आदित्यपुर स्थित जियाडा शिविर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। फिलहाल सप्ताह में एक दिन शिकायतें सुनी जाएंगी। चतरा जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त रवि आनंद ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। सरायकेला खरसावां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए योगेश्वर प्रधान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मॉनसून प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पाटवाल, पंकज उधास, चंदन दास और मनहर उधास की आवाजों में चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गजल। आज के कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास, चंदन दास और मनहर उधास।

0: सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में आप चंद गजलों का लुत्फ उठा रहे थे। फनकार थे अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास, चंदन दास और मनहर उदास। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
0: शाम के 4:31 हो रहे हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत।

पाप का अंत, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे थे, अनजान का लिखा हुआ और बप्पी लाहिड़ी का संगीतबद्ध किया हुआ। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें थी। इसके पहले आपने वारिस फिल्म का गीत सुना था जिसमें लता मंगेशकर का साथ दिया था किशोर कुमार ने।

आइए अब सुने अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों का गाया शेष नाग फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों के गाए शेर स्नाग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में रात 8 बजे से भी। यह प्रसारण आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं कुछ ही पलों में आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार मुख्यांश।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश तथा झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 भुजी मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोहरदगा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने आज सदर प्रखंड और शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर अनमैप्ड मतदाताओं की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मैपिंग अभियान की जानकारी दी तथा बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को आवश्यक निर्देश दिए। गुमला जिले के सिसई अंचल कार्यालय में आज अंचल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त दिलेश्वर महतो सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भूमि मापी, दाखिल खारिज, लगान रसीद, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। गोड्डा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तरीय बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं को संगठन सुदृढ़ीकरण, जनगणना और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया। और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं। युवाणी कार्यक्रम सुनिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त रजा और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ खास विषयों पर, तो अगले कुछ मिनटों तक जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि बातों का सिलसिला बस शुरू होने ही वाला है। आज साल 2026 के इस शानदार शाम में मेरी नज़रें सीधा साल 2047 के उस खूबसूरत तस्वीर पर टिकी है जो हम सबको गर्व से भर देगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों के उस महासंकल्प की जो हमारी धड़कन बन चुका है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047।

साल 1947 जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी की खुली हवा में सांस ली थी, तब सपना था एक स्वतंत्र राष्ट्र का। और अब साल है 2026। आज हम सिर्फ आज़ाद नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती महाशक्ति है। और अब हमारा लक्ष्य और भी बड़ा है। ज़रा सोचिए, जब हमारा देश अपनी आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा,

भारत कैसा होगा? वो भारत किसी पर निर्भर नहीं होगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक होगा, चाहे वो यूपीआई की डिजिटल क्रांति हो या फिर स्पेस में इसरो के ऊंचे कदम। भारत अब रुकने वाला नहीं है। आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं है, यह हमारा स्वभाव बन चुका है। आज हमारा मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारा प्राइड बन चुका है। एक ऐसा भारत जहां गरीबी नहीं होगी, जहां हर नागरिक के पास आधुनिक सुविधाएं होंगी और जहां हमारी तकनीक पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी। लेकिन इस भव्य विकसित भारत की इमारत खड़ी किस पर होगी? जवाब है आत्मनिर्भरता पर। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम किसी पर निर्भर ना रहें। रक्षा से लेकर विज्ञान तक, आज भारत अपने हथियार और अपनी तकनीक खुद बना रहा है। आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि स्टार्टअप से हजारों को नौकरी देने वाला बन रहा है। और हमारे किसान भाई आधुनिक तकनीक से देश को समृद्ध बना रहे हैं। हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र को लीड कर रही है। देश के कोने कोने से आ रही सफलता की यह कहानियां साबित करती है कि जब देश की आधी आबादी यानी हमारी महिलाएं और हमारा युवा आगे बढ़ता है तो राष्ट्र की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। 2047 का भारत सिर्फ अमीर नहीं बल्कि हरा भरा और सुरक्षित भी होगा। ग्रीन एनर्जी, ऊर्जा और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम एक ऐसा सस्टेनेबल विकास कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल देगा। आज देश का हर नागरिक एक ही सुर में गा रहा है, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। दोस्तों, आत्मनिर्भर होने का मतलब यह नहीं कि हम किसी पर निर्भर ना रहें, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाना यानी वोकल फॉर लोकल होना है। लेकिन दोस्तों, यह विकसित भारत सिर्फ फाइलों और आंकड़ों में नहीं बनेगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ होगा आपका और हमारा, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अपनी नागरिक की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे, तभी तो देश असली मायनों में आत्मनिर्भर

दोस्तों, आज का भारत अगर आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने गर्व से खड़ा है, तो इसकी बुनियाद उन वीरों के बलिदान पर टिकी है जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को काट कर हमें आजाद हवा में सांस लेने का हौसला दिया। आज इतिहास के उस गौरवशाली पन्नों में जहां लिखा है एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम जिसने समंदर पार जाकर देश के अपमान का बदला लिया, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेरे पंजाब सरदार उद्धम सिंह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर की तरह दहाड़ने वाले उद्धम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। पंजाब के संगरूर में जन्मे इस शेर ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनका बचपन अमृतसर के एक अनाथालय में बीता। दोस्तों, तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां हजारों लोग बैसाखी का त्योहार मनाने और एक शांत सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी जनरल डायर के क्रूर आदेश पर ब्रिटिश फौज ने अंधाधुन गोलियां बरसा दी। चारों तरफ चीख पुकार और लाशों की ढेर लग गए। इस दिल दहला देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देखने वाला एक 20 साल का अनाथ नौजवान भी वहीं मौजूद था। वो नौजवान थे उद्धम सिंह। उस रात शहीदों के खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर उद्धम सिंह ने कसम खाई थी इस कत्लेआम के मुख्य गुनहगार पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर को उसके किए की सजा देने की। 21 साल सुनने में यह सिर्फ एक संख्या लगती है दोस्तों, लेकिन इस बदले को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने अपनी जिंदगी के 21 साल तपस्या में गुजार दिए। वो देशों में भटके, उन्होंने पैसे जुटाने के लिए काम किया। मकसद सिर्फ एक था, बंदूक खरीदना और लंदन पहुंचना, और आखिरकार साल 1934 में लंदन जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। यह सिर्फ एक नाम नहीं था दोस्तों, बल्कि भारत की एकता और धर्म निरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक था। और फिर आया वो दिन 13 मार्च 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर भाषण दे रहा था। उद्धम सिंह एक किताब के पन्नों को काटकर उसमें अपनी रिवॉल्वर छुपाकर हॉल के भीतर दाखिल हुए। जैसे ही मौका मिला, धाए धाए दो गोलियों की सीधे ओडायर के सीने में जा लगी। जलियांवाला बाग का हिसाब लंदन की धरती पर चुकता हो चुका था। गोलियां चलाने के बाद उद्धम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। साल 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में इस वीर को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज के लिए बस इतना ही। प्रस्तुत है आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म शहीद का गीत। इसके गीतकार थे देव कोहली, आवाज दी थी हंसराज हंस ने और संगीत से सजाया था आनंदराज आनंद ने। दोस्तों, जब हम देश की रक्षा और उसके स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप ही उन सीमाओं और वादियों की तरफ जाता है जो भारत का मुकुट है। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत के उस जादुई कोने की सैर पर जिसे हम सात बहनों और एक भाई यानी हमारे पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता और बेमिसाल जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का सबसे अनमोल खजाना है। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत सिर्फ 8 राज्यों का समूह नहीं है, यह प्रकृति की गोद में बसा एक जादुई संसार है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि देखकर आंखें ठहर जाए और दिल बस यही कहे, वाह काश मैं यहीं का होकर रह जाऊं। मेघालय से चेरापूंजी और मॉनसून राम की वो रिमझिम बारिश, असम के हरे भरे चाय के बगान और अरुणाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी चोटियां, सचमुच ईश्वर ने फुर्सत में इस जमीन को तराशा है। यहाँ की नदियां जैसे विशाल ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी का जरिया नहीं है बल्कि इस पूरे इलाके की जीवन रेखा है। यहाँ के जैव विविधता का आलम यह है कि भारत में पाई जाने वाली पौधों और जीवों की आधा से ज्यादा प्रजातियां अकेले इसी क्षेत्र में मुस्कुराती हैं। आज हमारे पूर्वोत्तर के लोग अपनी इस प्राकृतिक विरासत, अपनी संस्कृति और इन जंगलों को बचाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। यह सिर्फ जंगलों और पहाड़ों का समूह नहीं है, यह भारत की धड़कन है जो अपनी हरियाली से पूरे देश को ऑक्सीजन और जीवन देती है। साफ हवा, सुहाना मौसम, अनोखे जीव और इससे भी प्यारे यहाँ के लोग जो अपनी संस्कृति के साथ साथ

दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की एक और बात है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह है वहाँ का समाज। वहाँ की महिलाओं की स्थिति और समाज में उनका सम्मान कई उत्तर पूर्वी जनजातियों में मैट्रियार्कल या महिला प्रधान समाज की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जहाँ महिलाओं को बराबरी का और बेहद मजबूत स्थान हासिल है। और बस पूर्वोत्तर की इसी खूबसूरती को और बराबरी की सोच को समेटते हुए आज हम अपने शो के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा विषय जिस पर आज बात करना बेहद जरूरी है, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी। जब भी यह शब्द सामने आता है, लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन असल में यह हम सबके हक की बात है। दोस्तों, जब भी हम देश बदलने की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है युवाओं का, यानी आपका और हमारा। युवा इस देश का भविष्य ही नहीं बल्कि आज का वर्तमान भी है, बदलाव की इस गाड़ी के असली ड्राइवर। जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो यह सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है, यह एक ऐसे समाज को बनाने की बात है जहां लड़का हो या लड़की, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। आज का युवा रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज सोशल मीडिया के जरिए हो या जमीनी स्तर पर, युवा हर उस स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं जो किसी को उसके जेंडर की वजह से पीछे धकेलता है। चाहे घर में कामों में हाथ बटाना हो या कार्यस्थल पर महिलाओं का समान वेतन और सम्मान दिलाने की आवाज उठाना हो, युवा हर मोर्चे पर आगे है और यह बदलाव घरों से शुरू हो रहा है। आज का युवा लड़का रसोई में हाथ बटाने से नहीं कतराता, वही आज की लड़कियां गैरेज में गाड़ी ठीक करने या घर का खर्च उठाने में पीछे नहीं है। काम का कोई जेंडर नहीं होता और बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से और अपने घर से होती है। अगर आज का युवा अपने घर में भाई बहन के बीच फर्क को खत्म कर दे तो एक समतावादी समाज की नींव वहीं खड़ी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी की क्षमता उसकी काबिलियत से आंकी जाए, उसके जेंडर से नहीं। लड़के और लड़की को बराबरी का आसमान मिले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। प्रस्तुत है आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लक्ष्य का गीत। इसके गीतकार थे जावेद अख्तर, इसे संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने और आवाज़ दी थी शंकर महादेवन ने। इसी के साथ चलिए लेते हैं आज का क्विक डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें रोजगार मेला के तहत देश के युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारों की संख्या में नए सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को गति देने के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में बस इतना ही। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि पूर्वोत्तर की वादियों से लेकर पूरे देश में जब हर हाथ को काम मिलेगा और हर बेटी को बराबरी का सम्मान मिलेगा, तभी सरदार उधम सिंह जैसी महान आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और हमारा देश सच में आत्मनिर्भर बनेगा। इसी संदेश के साथ आपकी दोस्त श्रीजा को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

युवा श्रोताओं के लिए था हमारा कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम आपने सुना एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रमिक साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने।

0: शनिवार की इस प्यारी सी शाम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और इस शाम को बनाएंगे कुछ खास जानकारियों भरा और मनोरंजन से भरपूर। तो बने रहिए एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप सभी को रश्मि तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है। ये दिवस

से पीड़ित व्यक्तियों के आंखों में तीव्र प्रकाश यूवी किरणों के प्रति संवेदनशीलता होती है। ऐसे कर्मचारियों को खिड़की से दूर या उचित लाइट वाली जगह पर बैठने की संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाएं। श्रोताओ, कार्यालयों में इस आनुवांशिक स्थिति के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी साझा करें ताकि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या गलतफहमी को दूर किया जा सके। विविधता का सम्मान करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित विषयों जैसे अपनी त्वचा पर गर्व के अनुरूप सभी प्रकार की शारीरिक और मानवीय विविधताओं को सहजता से स्वीकार करें। शिक्षा और जानकारी का प्रसार करें। आप संयुक्त राष्ट्र जैसे आधिकारिक मंचों से सटीक जानकारी साझा करके सहकर्मियों को जागरूक कर सकते हैं। नीतियों का समर्थन करें। यदि आप HR विभाग या प्रबंधन में हैं, तो कार्यस्थल की विविधता और समावेशन नीतियों में एल्बिनिज्म से जुड़े पहलुओं को शामिल करें। श्रोता साथी, इस तरह इस दिन के महत्व को पहचानें और कार्यालय में बातचीत या जागरूकता सत्र आयोजित करने में पहल करें।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म अनामिका का ये गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

0: इस संदेश के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं कुछ खास जानकारियों की तरफ और जानकारी हासिल करते हैं वार्ता के जरिए। विषय है 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं। वार्ताकार हैं रामकंडे मिश्रा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री 15 सूत्री कल्याणकारी योजना का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाने का प्रयास शुरू कर दी है। यह अलग बात है कि इस योजना का शुभारंभ 1994 में ही हुआ था, लेकिन इसे बेहतर ढंग से लागू नहीं किया जा सका था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं में मुख्य रूप से जिन 15 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, उनमें एकीकृत बाल विकास योजना की समुचित उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षणिक अधोसंरचना को उन्नत करना के साथ साथ गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना को भी इसमें लागू किया जाना है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि, ऋण सहायता, इसके तहत बैंक वगैरह से हम सुलभता से ऋण वगैरह उपलब्ध कराया जा सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजनाओं में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के साथ साथ सांप्रदायिक अपराधी और अपराधों के लिए अभियोजन, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास भी इस योजना में शामिल किया गया है। कौन कौन से नियम इसके दायरे में आएंगे इसे भी बताया गया है। हमारे लिए इसे थोड़ा संक्षिप्त में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय इसका समुचित लाभ उठा सकता है। अब हम देखते हैं कि एकीकृत बाल विकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता के तहत कौन कौन से कार्य और कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य अपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण विकास, इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसे पोषण स्वास्थ्य जांच, संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गांवों प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे ताकि इस योजना का लाभ उन्हें उचित रूप से मिल सके। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांव अथवा क्षेत्रों में स्थापित की जाए। उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन जुटाना भी योजना का लक्ष्य है। उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती एवं तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम 1/4 जनसंख्या की सेवा करते हैं। इसके अलावा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण की भी बात इसमें शामिल की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी इस योजना के तहत की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनाई एवं कार्यान्वित की जाएगी। जहाँ तक मौलाना शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षणिक अधोसंरचना को उन्नत करने की बात है, तो इसके तहत सरकार मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी संभव सहायता देगी ताकि वह अपने कार्यकलाप को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ और व्यापक कर सके। गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना को इसमें शामिल कर सरकार ने एक बेहतर कार्य किया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम योजना और दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बचे हुए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए कुछ समय के लिए तब तक निर्धारित किया जाएगा जब तक कि इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से जोड़ नहीं लिया जाता है। साथ ही आवंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों को काफी आबादी रहती हो। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन भी इस योजना का प्रमुख ध्येय है। अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में संलग्न है या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उपजीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों को उसी आधार पर उन्नत भी किया जाएगा। ये एक अच्छी सोच है। आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता भी एक अच्छा सहयोगात्मक कार्य है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा सरकार इस

0: निगम को अधिक समान रूप से सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा। स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक शर्त है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40% लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ इस बात को भी शामिल किया गया है कि खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों एवं छोटे काम धंधों के लिए ऋण, फुटकर व्यवसाय यानी रिटेल ट्रेड व्यवसायिक स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण और अन्य छोटे ऋण इसमें शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हो। राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती की भी योजना को इसमें शामिल किया गया है। राज्य सरकार को यह सलाह दी जाएगी कि पुलिस कर्मियों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए। इसके लिए चयन समितियों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्रवाई भी केंद्र सरकार करेगी। रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है या नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी एवं विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी, जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण आवास योजना में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। इंदिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन यानी गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार करना भी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल किया गया है। एकीकृत आवास एवं मलिन गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार शहरी गंदी बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को सहायता देती है, जिससे कि इन बस्तियों में जन सुविधाएं और मूल सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तथा घनी आबादी वाले नगरों और गंदी बस्तियों को उचित रूप से मिल रहा है कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन भी चलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के तहत कुछ सख्त नियम भी तय किए जाएंगे। वैसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा करते हैं या हिंसा के लिए उकसाते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अपराधियों को शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जा सके और उन्हें सजा मिल सके। सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनकी पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन तमाम लक्ष्यों को इस 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं में शामिल कर सरकार ने उनके विकास के लिए अच्छे संकेत दिए हैं, जो निकट भविष्य में देखने को मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं। वार्ताकार थे रामकंडे मिश्रा। श्रोताओं, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जो पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान करती है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी बिना किसी आय सीमा के योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। आइए श्रोताओं, अब जान लेते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं और लाभों के बारे में। इसमें प्रत्येक पात्र परिवार को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5,00,000 तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलती है। इसमें कैंसर, न्यूरोसर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। श्रोताओं, इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अलग से 5,00,000 तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवरेज दिया गया है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न श्रेणी के लोग पात्र होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, जातिक जनगणना के अनुसार ग्रामीण और वंचित शहरी परिवार, वे परिवार जिनमें कोई वैक्स कमाने वाला सदस्य नहीं है या जिनमें दिव्यांग शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर जाति विशेष अभियान के माध्यम से भी पंजीकरण कराए जा सकते हैं।

कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का ये गीत। गीत गुलशन बावरा का था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति रश्मि तिवारी को। नमस्कार।

0: कल कारखाने श्रमिक श्रोता सुन रहे थे ये दैनिक प्रसारण। प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में एक विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा।

0: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नागपुरी लोकगीत से। कलाकार हैं मेघनाथ महतो और साथी।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार मेघनाथ महतो और साथियों की आवाज में नागपुरी लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारे कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोतामित्र, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरकारी योजनाओं से मछली पालन में किसानों को मिल रहे लाभ के संदर्भ में। जी हां श्रोतामित्रों, झारखंड प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा किसानों को कई वित्तीय और तकनीकी लाभ दिए जा रहे हैं। किसान भाई बहनों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा 70% से 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। नए तालाबों के निर्माण, बायोफ्लॉक टैंक और आरएएस लगाने पर सरकार द्वारा 50% से लेकर 80% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पिंजरे में मछली पालन, आरएएस और बायोफ्लॉक जैसे आधुनिक तकनीकों के तहत मछली पालन करने वाले किसान भाई बहनों को दाने की लागत का 50% या अधिकतम 22 प्रति किलो तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी कर दी जा रही है। मछली के साथ साथ बत्तख पालन या सुकर पालन करने के लिए भी राज्य सरकार एससी एसटी और महिला लाभार्थियों को 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मछली पालन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और सजावटी मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मत्स्य सहकारी समितियों को मछली परिवहन के लिए पिकअप वैन और बाजार में बिक्री केंद्र खोलने के लिए अनुदानित सहायता प्राप्त की जा रही है। रांची स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र और स्थानीय मत्स्य मित्रों द्वारा

आहार पर खर्च होता है। पशु को प्रतिदिन के आहार में हरा चारा, सूखा चारा, दाना सही अनुपात में देने की जरूरत है। दुधारू पशुओं के लिए 1 किलोग्राम दाना प्रति 2.5 किलोग्राम दूध के हिसाब से अतिरिक्त दाना आप दे सकते हैं। पशुओं के आहार में प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 ग्राम नमक अवश्य मिलाएं। इससे प्रजनन क्षमता और दूध की गुणवत्ता में सुधार होगी। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पानी पीने को दे, जो पाचन क्रिया के लिए जरूरी है। श्रोता मित्रों, अगर हम टीकाकरण की बात करें तो खुरपका, मुंहपका और गलघोंटू जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए साल में 2 बार पशु चिकित्सक से वैक्सीन लगवाएं। हर 3 से 4 महीने में पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य दें, ताकि वे जो भी खाएं उनका पूरा पोषण उनके शरीर को मिले। अब हम बात कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार की करते हैं। प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान एआई से अच्छी नस्ल जैसे साहिवाल, जर्सी या एचएफ का चुनाव करना आसान होता है। यह विधि यौन संचारित रोगों के प्रसार को रोकती है। हमेशा प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले सीमेन का ही आप उपयोग करें, ताकि पैदा होने वाली बाछी अधिक दूध देने वाली बन सके। राज्य सरकार द्वारा पशुपालक भाई बहनों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं भी चलाई जा रही हैं। आप अपने निकटतम राजकीय पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं और अपने पशुओं की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कलाकार जॉन पीटरिक का और साथियों की आवाज में उड़ाव लोकगीत। और अब बात भारत विस्तार ऐप के संदर्भ में। जी हां, भारत विस्तार ऐप भारत सरकार द्वारा किसान भाई बहनों के लिए शुरू किया गया एक AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से खेती को आसान और लाभदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ICAR और मौसम विभाग IMD द्वारा प्रमाणित जानकारी, यदि फसल में कोई बीमारी है तो उसकी फोटो अपलोड करके सही दवा का पता लगाया जा सकता है। सभी केंद्रीय और राज्य योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की स्थिति की जानकारी, अपने आसपास की मंडियों में फसलों के ताजा दाम की सटीक जानकारी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी, मराठी आदि में भी बातचीत कर सकता है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

0: यदि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो 1-55-261-155-261 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भारत विस्तार वेब पोर्टल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो श्रोता मित्रों, सही और सटीक जानकारी का लाभ अवश्य उठाएं। ग्रामीण श्रोता मित्रों, और अब रुख करते हैं भेंटवार्ता की ओर। जी हां, भेंटवार्ता के पुनः प्रसारण में आज हम सुनने वाले हैं कानूनी जागरूकता के संदर्भ में। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता अमर कुमार तिवारी जी। तो चलिए सुनते हैं। ग्रामीण श्रोता मित्रों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे आज का विषय है लोगों में कानूनी जागरूकता। जी हाँ, किस तरह से लोग अपने कानूनी अधिकार से वंचित रह जा रहे हैं, क्या उनका अधिकार है, किस तरह से वो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे तमाम जानकारियों को आज हम साझा करने वाले हैं अधिवक्ता श्री अमर तिवारी जी के साथ, जो हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। इनसे हम ढेर सारी जानकारियों को साझा करने वाले हैं। अमर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अमर जी, सर्वप्रथम बताएं कि कानूनी जागरूकता का अर्थ क्या है।
1: देखिए, कानूनी जागरूकता का जो अर्थ है, जो आम जो जितने लोग हैं, है ना, उन लोगों का जो आपस में जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, कहने का मतलब, और जो कानून जो विधि बना हुआ है उसके बारे में शिक्षित करके उन्हें मजबूत बनाना, ये इसका मूल अर्थ होता है, कहने का मतलब, ताकि लोगों को जो अपने राइट्स हैं, कहने का मतलब जो कर्तव्य है, और जो कानूनी जो भी सहायता है उसको प्राप्त करने के लिए ये बहुत मूल चीज़ है, कहने का मतलब। तो ये इसीलिए अवेयरनेस, जागरूकता हम लोग प्रदान करते लोगों में।
0: अमर जी, अगर हम कानूनी साक्षरता और संस्कृति के बारे में बात करें तो उसका क्या तात्पर्य है?
1: देखिए, इसका मतलब है कि जो कानूनी जो प्रक्रिया जो होते हैं, है ना, उसके बारे में लोगों को बताना कि इस कैसे इसका मतलब प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, कैसे इसमें काम करते हैं हम लोग, तो इसकी आपस में समझ को बढ़ाना होता है कि लोगों में कैसे इसका प्रक्रिया है। तो जब तक वो लोगों को समझाएंगे नहीं, समझ वो लोगों को बढ़ेगा नहीं, तो इसी संबंध में इसके
0: मतलब कहने का मतलब है कि कानूनी साक्षरता यानी कानून के संबंध में जानकारी पूरी तरह से होना, उन्हें अच्छी तरह से मतलब डीपली ये बताना कि आखिर कानूनी जो वो जिस अधिकार से वो वंचित रह जा रहे हैं, वो अधिकार किस तरह से उन्हें प्राप्त होगा, कैसे वो पूरी तरह से अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, ये कानूनी साक्षरता के अंतर्गत आता है। अगर हम कानूनी संस्कृति के बारे में बात करें तो वो क्या है?
1: जो कानूनी संस्कृति होती है, एक जो बहुत मजबूत संस्कृति होती है, कहने का मतलब जो कानून के शासन, जो कानून के शासन होते हैं उसको बढ़ावा देती है लोगों में, उसकी लोगों में उसको अवेयरनेस होता है, ये संस्कृति कानून की होती है कहीं ना कहीं, कि लोग इसमें किस तरीके से काम करें और उसके हाव भाव को समझे, कहने का मतलब ये संस्कृति है जिसको बढ़ावा देने मदद करती है।
0: कानूनी जागरूकता की अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण क्यों है?
1: देखिए, आम लोगों का जो राइट्स होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो उसकी सुरक्षा करती है। कैसे सुरक्षा करती है? कि जो जागरूकता हम लोग करते हैं तो उससे लोगों में जैसे कोई शोषण हो रहा है या धोखाधड़ी हो रही है, है ना, इन सब चीज़ों से जागरूकता करने से वो लोग को बचाती है, उससे वो काफ़ी सेफ रहते हैं। तो इसीलिए ये जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ताकि जो भी लोग, जो आम लोग हैं, जो लोग हैं, वो शोषण से बचे, धोखाधड़ी से बचे, और बहुत सारा चीज़ है जिससे वो शोषित होने से बच सकते हैं, कहने का मतलब।
0: अच्छा, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अमर जी, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, वो अपने कानूनी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाते और हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाते हैं, और ऐसे में अगर मतलब उन्हें कोई गुमराह करे तो वो उनकी बात में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में डायन प्रथा हो या फिर ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो जड़ से लिप्त हैं, अभी तक वो उनसे हमारे ग्रामीण भाई बहन बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनमें थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है क्योंकि वो हमेशा किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी जागरूकता के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कहने का मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विवाद होते हैं, है ना, सबसे पहले हम विवादों को अगर देखा जाए तो ये सारे लोग जितने ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों आपस में जो जमीन का हो गया मैटर, कहने का मतलब देखा जाए तो उन लोग का क्या है कि जमीन का मैटर विवाद में क्या है कि वो लोग कानून का मत समझ नहीं रहता है कि कैसे हम किस किस स्टेज पर जाएं, है ना। तो उसमें आपस में क्या करता है, लोग झगड़ा झंझट कर लेता है, कहने का मतलब, और उसको समाधान निकल नहीं पाता। तो उसके लिए हमारे हमारे देश में पैनल बना हुआ है, जैसे नालसा हो गया, डालसा हो गया, झालसा हो गया। जो डालसा जो होता है, प्रत्येक जिला में इसका स्थापना किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। जिस समय हम जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस टाइम हम लोग की एक टीचर थी डॉक्टर रंजू, उनके नेतृत्व में हम लोग कई जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूलों में, आसपास जो में लीगल अवेयरनेस कैंप लगाए थे, जिसमें हम लोग डायन प्रथा हो गया, और कैसे हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करने से बच्चे बचे, कहने का मतलब। उसके बाद में पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी हम लोग दिए थे कि कैसे हम लोग सेफ रहें, लड़कियां जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो लोग को कोई बहला फुसला के कुछ गलत काम नहीं करे। तो हम लोग पॉक्सो से जानकारी काफ़ी स्कूलों में दिए थे हम लोग, और साथ में डायन प्रथा को कैसे हम लोग ख़त्म करें, कहने का मतलब, उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी दिए। तो और ज़रूरी नहीं होता कि सब ये सारी जानकारी मौखिक रूप से, इन सभी का बुक पम्पलेट नालसा डालसा झालसा के द्वारा द्वारा हमेशा कैंप लगा कर जगह जगह दिया जाता है। बशर्ते क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र को जो लोग हैं वो लोग इस कैंप में हमेशा भाग ले, अगर जिनको खबर मिलती है, और अधिक से अधिक अगर जानकारी लेना है तो डालसा जमशेदपुर में यहाँ न्यायालय है, यहाँ पर ही या अन्य जिलों में भी हर कोर्ट में एक न्याय सदन है, वहाँ डालसा का स्थापना किया हुआ है, वो लोग आके जानकारी ले सकते हैं और सारा चीज़ को पूछ सकते हैं। वो सारी चीज़ें मुफ्त है उनके लिए, कि ताकि वो विवादों में ना पड़े और कोई गलत कदम ना उठाए और कानून के अनुरूप वो चल सके।
0: कहने का मतलब है, जिस डालसा को स्थापित किया गया है, मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के निवासी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, उन्हें जानकारियों का अभाव ना हो, उन्हें कानून से संबंधित न्याय किस प्रकार से उन्हें मिलेगी और किस तरह से वो किसी के झांसे में ना आ पाए, कहीं गुमराह ना हो पाए। पॉस्को एक्ट के संबंध में आपने बताया, नशे से दूरी किस तरह से हमारे ग्रामीण बच्चों को करना है उस संबंध में बताया, डायन प्रथा, ये जो कुप्रथाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त है, इससे कैसे बाहर निकलना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी तत्परता दिखाते हुए इस कैंप में जाएं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जानकारी हासिल कर अन्य लोगों को भी जागरूक करें। अच्छा अमर जी, एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति कैसे पहचानेंगे कि उनके पास कानूनी अधिकार या फिर जिम्मेदारी है?
1: देखिए, जब तक उसका वो लोग प्रयोग करेंगे, मतलब किसी चीज़ का अगर प्रयोग करने से पहले उन लोगों को पहचानना को जरूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं वो मतलब हमारा राइट्स है कि नहीं है, कहने का मूल अधिकार है कि नहीं है, कर्तव्य है कि नहीं है। तो सारी चीज़ को, जहाँ पर ही अधिकार है वहाँ कर्तव्य है, जहाँ कर्तव्य है जहाँ अधिकार है, कहने का मतलब। जो अधिकार है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी बनी हुई है, कहने का मतलब। अगर आपको राइट्स दिया हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी भी कि आप कैसे समाज में एक अच्छा काम कर सके, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि अगर कोई आपको कोई भी आपका अधिकार है, चाहे जिम्मेदारी है, है ना, तो जो समस्या है ना, और ये समस्या समझना होगा कि वो समस्या किस प्रकार का है, कानूनी समस्या है कि सामाजिक समस्या है, कहने का मतलब। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप पहचान नहीं करिएगा, उसके लिए अगर कहीं से आप जानकारी नहीं लीजिएगा या आप शिक्षित नहीं हो पाइएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले जो जो जो एजुकेशन है, एजुकेशन हब में काफ़ी आपको आगे जाना चाहिए, विधि के संबंध में काफ़ी आगे बढ़ना चाहिए कि जो अब कानूनी अधिकार आम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो कानून अधिकार का मतलब क्या है कि जो जो विधि के जानकार होंगे, तो विधि जानकार से क्या है, जो आपस जो विद्यार्थी हैं, विधि महाविद्यालय बना हुआ है, वहाँ जो आगे लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो उस क्षेत्र में अगर जानना चाहते हैं कि मेरा क्या क्या कानूनी अधिकार है, कैसे हम कानून का यूज कर सकते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में अगर जानना है कि हमको क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या अधिकार है, तो इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय, विधि में महाविद्यालय बना हुआ है, तो उन सब चीज़ के लिए वहाँ पर वो लोग जो विद्यार्थी हैं, जो जो लोगों लोगों को जो जितने भी आप जो पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ नामांकन ले सके, नामांकन लें और विधि के क्षेत्र में बढ़ें, तभी जाके उनको कानूनी रूप से जानकारी मिलेगी कि कानून है क्या, इसके बारे में विस्तार पूर्वक, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ प्रयोग नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा।
0: इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: कानूनी जागरूकता के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे अमर कुमार तिवारी। ग्रामीण श्रोता मित्रों, बात एग्रोनॉमी के संबंध में। जी हाँ, एग्रोनॉमी जिसे हिंदी में सस्य

विज्ञान कहा जाता है। कृषि विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन और भूमि मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और वैज्ञानिक तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों एग्रोस अर्थात खेत या भूमि और नॉम्स अर्थात प्रबंधन से मिलकर बना है। सामान्य शब्दों में इसका मुख्य उद्देश्य उचित भूमि प्रबंधन के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। सस्य विज्ञान में मुख्य बातें हैं जैसे भोजन, ईंधन, चारा और फाइबर प्राप्त करने के लिए फसलों को उगाने की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पोषक तत्वों की आपूर्ति करना और मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, फसलों को सही समय पर और आवश्यकता अनुसार पानी देना, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों जैसे खरपतवार को नष्ट करना ताकि मुख्य फसल को पर्याप्त पोषण मिल सके, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन, बुआई के सही तरीके और उचित समय पर फसल की कटाई करना। एग्रोनॉमी अन्य विषयों जैसे वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी और मृदा विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके टिकाऊ खेती को बढ़ावा देती है। श्रोता मित्रों, और एक नजर डालते हैं मौसम संबंधी सुझाव पर। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों, धान की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जा रही है। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने के लिए लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौध तैयार करना पर्याप्त होता है। नर्सरी के क्षेत्र को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा सुविधा अनुसार लंबी क्यारियों में बांटे पौधशाला में बुआई से पूर्व बीजोपचार के लिए 5.0 किलोग्राम बीज के लिए बावेस्टिन 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोल लें। अरहर की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। किसान भाई बहनों से आग्रह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं फफूंद के टीकों से उपचार कर लें। इस उपचार से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। मूंग एवं उड़द की फसल की बुआई के लिए किसान भाई बहनों उन्नत बीजों की बुआई करें। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान अवश्य रखें। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचारित करें। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। यह समय अगेती, फूलगोभी, टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई बहन यह प्रयास करें कि कीट अवरोधी नाइलोन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को थीराम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचार के बाद पौधशाला में बुआई करें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से डालें तथा इसके उपरांत सिंचाई करें। साथ ही तापमान को ध्यान में रखते हुए माइट, जैसेट और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें। तापमान को देखते हुए किसान भाई बहनों तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रखें। इस मौसम में किसान भाई बहन अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाकर उचित पोषक तत्व भूमि में मिलाएं और जहां संभव हो अपने खेत को समतल अवश्य करवा लें। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीटों, रोगाणु तथा खरपतवार के बीज आदि नष्ट हो जाएं। और श्रोता मित्र, चलते चलते हम आपको बता दें कि योग करें निरोग रहें। जी हां, केवल एक कहावत नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए आप कुछ अभ्यास कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम की अगर हम बात करें तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। मुख्य योगासन की बात करें तो ताड़ासन, भुंजगासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार या 12 आसनों का एक संपूर्ण योग है जो पूरे शरीर के अंगों को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। तो श्रोता मित्रों, आप प्रतिदिन योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।

क्षेत्र केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत। इस सभा में अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन, और 7:10 पर होगा जिले में आजकल रिले कर हम आपको सुनवाएंगे अपने रांची केंद्र से। इसके ठीक बाद बांग्ला प्रेमी श्रोता बांग्ला कार्यक्रम का आनंद लेंगे। शाम 7:45 पर सुनिएगा अंग्रेजी कार्यक्रम, और फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे से। राष्ट्रीय प्रसारण के आज के कार्यक्रमों में हिंदी समाचार बुलेटिन समाचार संध्या आज 8:45 पर, रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार बुलेटिन न्यूज एट 9। करंट इवेंट्स का प्रोग्राम स्पॉटलाइट होगा रात 9:15 पर। 9:30 का समय राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती का। रात 10 बजे से आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे यूएस प्रसाद का कर्नाटक शैली में सैक्सोफोन वादन। रात 10 बजे समय याद रखिए, कार्यक्रम होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रसारण का यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ पलों में हमारे रांची केंद्र से होगा, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवाणी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रनों से हराया। छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की निरंतर प्रगति की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
1: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके 12 साल पूरे हुए हैं, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, आज उनके दीर्घायु के लिए, ताकि देश और शक्तिशाली

0: बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसी ये आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने आए हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने सोलहभुजी मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा मां देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरायकेला खरसावा के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर राज्य में पेसा नियमावली लागू करने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने पेसा नियमावली को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेसा का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करना और आदिवासी परंपराओं को सशक्त बनाना है। रामगढ़ जिले के अरड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी या गैस रिसाव के कारण वे अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर कुजू पुलिस और नई सराय माइंस रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आगामी 15 जून को देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा तथा परिसर में रंगोली सजाई जाएगी। इसके अलावा पौध वितरण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, वृक्षारोपण और झारखंड की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
2: 15 जून को हम भारत के सभी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं और इस यात्री सुविधा दिवस को मनाने का जो कारण है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना, उनके यात्रा को सुगम बनाना, सुरक्षित बनाना, और जो भी हमारे यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं या करते हैं, उनको उस दिन एक विशेष दिन का अनुभव हो।
1: रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में सिमडेगा जिले ने 100% सफलता हासिल की है। CMMS पोर्टल पर 9 जून तक प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार जिलों में यह कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पदाधिकारियों और कर्मियों के बेहतर टीम वर्क के कारण कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य समय से पहले पूरा किया जा सका।
3: 100% हाउस लिस्टिंग है वो कर लिया है और समय के पहले ही कर लिया है, तो इसी के रिकॉग्निशन में एक प्रशस्ति पत्र हम लोगों को दिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे अधिकारी और कर्मी आगे भी काम करते रहेंगे और भारत की जनगणना का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है उसमें हम सिमडेगा जिले को त्रुटि रहित ढंग से और बढ़िया तरीके से सिमडेगा जिले में ये काम कर पाएंगे।
1: धनबाद में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिले में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा उपायुक्त आदित्य रंजन ने सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में दी।
4: सभी बच्चों को बताया गया कि लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारा स्टेट लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लाइब्रेरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का। कोशिश करेंगे कि सभी लाइब्रेरी 24 घंटे चले और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई का। और वैसे भी धनबाद के बच्चों का रिजल्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा रहता है, आने वाले समय में वो संख्या और बढ़े।
1: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कारण चाकुलिया टाटानगर, टाटानगर बड़बिल, बड़बिल टाटानगर और टाटानगर चाकुलिया मेमू ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द किया गया है। मौसम। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड प्रीमियर लीग 2026 में आज खेले गए सातवें मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने निर्धारित ओवरों में मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में रांची टाइटंस लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। वहीं टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवानी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराया, छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गुमला जिला में 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि
2: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में, एक हमारा प्राइमरी स्कूल है मिडिल स्कूल चौरापाट, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय चौरापाट एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय डोकापाट, ये दोनों विद्यालयों में 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है।
1: इस वर्ष मानसून के कमजोर होने की संभावना है, ऐसे में कम बारिश एवं कम समय में किसानों को धान सहित अन्य फसलों को लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने गुमला जिले के किसानों से अपील की है।
3: हमारे यहाँ इस बार इन दिनों का इफेक्ट है, इस वजह से हम लोग आकस्मिक योजना भी बनाए हुए हैं, विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए इस संदर्भ में हम लोगों ने जिला स्तरीय एक कार्यशाला भी किया है और विभिन्न प्रखंडों में भी हम लोगों ने कार्यशाला किया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि इस आकस्मिक समय में हम लोग ऐसे धान के बीजों का चुनाव करें जो एक तो कम अवधि की हो और साथ में जो हमारे जमीन की प्रकृति है, जो टाढ़ जमीन है, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें विविधता लाने की। अदर देन धान हम लोग वैसे फसलों का चुनाव करें, जैसे हमारे उड़द हो गया, मूंग हो गया, हमारे मसूर के दाल हो गए, अरहर के दाल हो गए, इन सब के लिए जिला में हम लोगों को लक्ष्य भी दिया गया है। जैसे उड़द में हम लोगों को 600 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है और उड़द में 490 क्विंटल का और मूंग में 90

0: तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन सभी फसलों का आप चुनाव करिए, साथ में मड़ुआ का भी खेती को अधिक लगा सकते हैं। मड़ुआ की खेती में आप लोगों को हम लोग इंसेंटिव के तौर पर 3,000 प्रति एकड़ की दर से आपको प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। कोदो की भी आप खेती कर सकते हैं, गुंदली कर सकते हैं, माइनर मिलेट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो मक्का भी हम लोग इस बार मंगा रहे हैं। वो बिसा फसल बीज विनिमय योजना अंतर्गत विभिन्न FPO स्लम्स में आप लोगों को इनके बीज उपलब्ध होंगे। साथ में आप लोगों को 50% अनुदान पर हम लोगों ने ऐसे बीज की डिमांड किया है जो आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो।
1: PM जनमन ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुमला जिला में अति पिछड़े इलाकों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है।
2: माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग काफी खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द बने। और ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बन रहा है, जिससे कि पहले होता क्या था कि आदिम जनजाति समुदाय के लोग यहाँ तक जाने के लिए काफी पैदल जाना पड़ता था, कभी पगडंडी का रास्ता हुआ कर। इसे बनने से क्या है कि आवागमन का सुविधा भी हो जाएगा और समय पर लोग अपने कामों से बाहर भी जा सकते हैं।
1: बहरहाल गुमला जिला में भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारी जा रही है, जिससे आने वाले समय में जिलेवासियों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
3: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन और जिले में आजकल आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:16 हुए हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए

0: बांग्ला प्रेमी श्रोता बांग्ला कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 होने को हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।

आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने आपको सुनवाया समझौता फिल्म से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों ने। इंदिवर थे शब्दकार, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

0: संघर्ष फिल्म के इस युगल गीत के लिए स्वर था श्रद्धा पंडित और सोनू निगम का, समीर की शब्द रचना थी, संगीत था जतिन ललित का। ये फिल्मी गीत आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। गीत संगीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए कुछ संदेश सुनते हैं।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
5: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठा घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
2: रात के 8:20 हो रहे हैं। अपने रेडियो और मोबाइल सेट पे आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गीत।

साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में सैनिक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीत रचना समीर की थी, संगीत नदीम श्रवण का था।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

चन्नी सिंह के संगीत से सजा यह गीत यलगार फिल्म से था, जिसे गाया था सपना अवस्थी और उदित नारायण ने। इस गीत को लिखा था सुदर्शन फाकिर ने।

कसूर फिल्म के इस गीत को समीर ने लिखा था, सुरों से सजाया था नदीम श्रवण ने, गाया था इसे अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और इस गीत के साथ ही फिल्म

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। कुछ पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय प्रसारण के कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें पहले देश दुनिया की खबरें होंगी, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में 8:45 पर और रात 9:00। अंग्रेजी में इंटरव्यू का प्रोग्राम स्पॉटलाइट होगा रात 9:15 पर। 9:30 पर सुनिएगा आज संस्कृति भारती, राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। और आज शनिवार है, रात 10:00 से संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें आज US प्रसाद के कर्नाटक शैली में सैक्सोफोन वादन का आनंद लीजिएगा।

ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा राष्ट्रीय प्रसारण सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ एक पलों की प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के

0: लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
0: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहां तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्टर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
0: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
1: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
0: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साथ स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग

0: और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डी यू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड, अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
2: जी हैं
0: rather than your own compositions?
2: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव डेट,
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया,
1: उसी आइडिया को लेके मेनस्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana ka jo spandan hai, jo lay hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai.

0: आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
1: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
1: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakas.
1: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: यह अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद, बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नु वीणा रामा, composed by त्यागराजा, is set to रूपकम तालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग

0: अभी आप सुन रहे थे यूश प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: Saath mein Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे

0: पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auxerre on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of the Army Staff with effect from 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event tomorrow. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.

हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की यह सभा अब संपन्न होती है। इसी आवृत्ति पर हमारी कल की सभा आरंभ होगी, प्रातः 5:55 पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शुभ रात्रि, जय हिंद।